95.2 मेगाहर्ट्ज पर हम से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 31 मई सन 2026 सुबह 5:59 होने को है। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्ध

0: रमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: झलवाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं आज का चिंतन भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन वार श्री रामचरित्र मानस गान और संगीत सरिता आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आज का चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये विचार है कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये था आज का चिंतन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 205। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता विविध भारती के खजाने से, इसके अंतर्गत गायिका आशा भोंसले से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 7:00 का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। 7:30 पर हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, जो केंद्रित होगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनिए अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की बातचीत। सुबह 11:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। प्रसारण समय याद रखिए सुबह 11:00 कार्यक्रम

मन की बात। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। एक बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर के लिए और 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30 पर और दिन में 3 बजे आप सुनेंगे मन चाहे गीत। नाट्य तरंग इस कार्यक्रम में नाटक अग्नि चक्र का दूसरा भाग सुनिए। मूल मलयालम लेखक हैं C.L. जोस, हिंदी नाट्य रूपांतरकार हैं P.G. वसुदेव और निर्देशक हैं भारत रत्न भार्गव। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 3:30 पर। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के सुनिए। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा विशेष जयमाला, सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरवर चांद बख्शी की शौर्य गाथा आपको सुनवाई जाएगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। 8 बजे कार्यक्रम होगा हवा महल, सुनिए नाटिका मूड। इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा छाया गीत, 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विह्वल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता में आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए हैं ऐसा नायाब हीरा जिसकी रोशनी से, या कहें कि जिसके अलग अलग पहलुओं से उठती किरणों से हम सभी की आंखें चकाचौंध हैं। ये कार्यक्रम वर्ष 1982 में पहली बार प्रसारित किया गया था। आइए उस दिन को ताजा करें। संगीत सरिता कार्यक्रम की संकेत धुन वही जो 1982 में हुआ करती थी और उद्घोषणा भी उसी दिन की। आइए सुनते हैं।
1: ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। संगीत सरिता। आज आप सुनेंगे हमारा संगीत सरिता का विशेष कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से। भेंट कर रही हैं डॉक्टर अचला नागर।

0: आयशा जी, यूं तो आप सुगम संगीत की गायिका के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन आपकी आवाज का जो पकाव है बतलाता है कि इसके पीछे शास्त्रीय संगीत की लंबी साधना रही है। क्या सच है?
1: साधना साधना तो है, लेकिन ज्यादा अगर क्लासिकल हम बहुत ज्यादा रियाज करें, जैसे कि क्लासिकल सिंगर करते हैं, यानी 8-8 घंटे तक गाना, अगर इतना रियाज अगर सुगम संगीत वाले करें तो उनके आवाज में वो लोच और एक मुलायम जो होती है मुलायमियत, वो रहती नहीं है। इसलिए हमें उतना रियाज नहीं करने दिया गया, लेकिन हमने रियाज किया है। रियाज यानी सुबह बहुत जल्दी उठना अंधेरे में और खर्च लगाना, उसके बाद 1 घंटे तक कम से कम हम लोग, मतलब मैं रियाज करती थी।
0: तो आपको मतलब घर में ही किसी से शिक्षा मिली या?
1: जी हाँ, मेरे पिताजी, मैंने आपको मालूम ही होगा
0: जी, हाँ,
1: दीनानाथ मंगेशकर जी क्लासिकल सिंगर थे, उनसे हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मेरी बदकिस्मती से बहुत जल्दी, मैं छोटी थी जब वो चल बसे। उसके बाद मैं मास्टर नवरंग जी से गाना सीखती रही और व्यास संगीत विद्यालय की मैंने 4 किताब की परीक्षा भी दी है। अब वो किताबों की जो परीक्षा दी थी, अब मुझे वो सब याद नहीं है। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, इनका आए ना बालम, ये गाना मैं कॉपी किया करती थी।
0: अच्छा,
1: मुझे उनका गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और नज़ाकत सलामत, इतना हर तरह से बेहतरीन गाना, बहुत मुश्किल होता है मेरी नज़र में, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं वो।
0: अभी आपने बहुत चोटी के संगीतकारों के कुछ के नाम लिए आशा जी, तो मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप क्लासिकल की बहुत जानकार है, मुझे मालूम है आप संगीत के कलाकार हैं, लेकिन एक श्रोता तो ही, सुरों का आपको ज्ञान है। ये जो खान साहब की, गुलाम अली खान साहब की जो आवाज़ थी, उसकी क्या चीज़ आपको अपने, मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या पसंद थी?
1: देखिए, एक तो संगीत के लिए, गाने वाले के लिए पहली चीज़ चाहिए वो आवाज़ और सुर, तान स्पष्ट, और जो बोल हैं, अगर वो ठुमरी गा रहे हैं तो वो बोलों के अदायगी क्लासिकल गाते हुए भी, ताम लेते हुए भी इतनी अच्छी करते थे कि वो मन को लग जाती थी। बचपन से मुझे, मैं छोटी थी तब, तो उनके मैं गाने सुनती थी, तो मुझे यही लगता था कि इनकी मींड उतनी ही अच्छी है, उतनी तान भी स्पष्ट है, छोटे कण कण दिखा के वो चीज़ को लेते थे। वैसे नज़ाकत सलामत, उनके जितना फास्ट तान मैंने आज तक सुनी नहीं, इतनी फास्ट तान और सरगम उतनी ही उनकी फास्ट थी। और जब वो स्लो गाते थे तब भी उनका संतुलन आवाज़ का, और तान जब फास्ट जाते थे तब का, वो कमाल का था मेरी नज़र में, एक आर्टिस्ट की नज़र में।
0: हाँ जी, वैसे देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीत और हमारा फिल्म संगीत दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों को मिलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, महत्व है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जिन कुछ फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत का पुट दिया गया है, वो सालों साल वैसे ही ताज़ा रहते हैं, सुनते हैं तो तब ऐसा लगता है कि कानों को वैसे ही मीठे लगते हैं। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत का उपयोग कहाँ तक फिल्मी गानों में किया जा सकता है?
1: पहली बात तो ये है अचला जी कि शास्त्रीय संगीत से हर गाना बनता है। शास्त्रीय संगीत नींव है, फिर इमारत खड़ी रहती है। तो आप कोई भी गाना लीजिए, उसमें शास्त्रीय संगीत होना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आप कहती हैं कि शास्त्रीय सुगम संगीत में शास्त्रीय संगीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक शुद्ध राग रखेंगे तो वो एक जैसा लगेगा। जैसे मालकंस का गाना, अगर आप 4 गाने बनाएंगे तो एक जैसा लगेगा।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो जो सुर हैं वो ही रहेंगे, इसीलिए वो एक जैसा। लेकिन उसमें अगर दूसरे सुर मिलावट करेंगे तो वो थोड़ा अलग लगेगा।

0: और अच्छा लगेगा। और फिल्म के लिए बहुत जरूरी है कि राग में मिलावट करें और बहुत खूबसूरती से मिलावट करें तो बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब ये कि ज्यादा उसमें अलाप और मुर्कियां और हरकतें ये
0: नहीं, हरकतें मुर्कते सब हो हाँ। लेकिन एक राग की जैसे सात सुर, एक कोई भी राग लीजिए आप, अगर वही सेम राग में अगर आप 10 ट्यूने बनाएंगे तो वो एक जैसी लगेंगी। अच्छा। इसलिए मिलावट करने से वो अलग अलग लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी।
1: एक सवाल है तो बहुत साधारण, लेकिन आपके मुंह से ही इसका हम उत्तर सुनना चाहते हैं कि जैसे कि नियमित रूप से किसी का पेशा है गाने का, वो रोज गाता है, गाया आके वापस लौटा है, लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है कि वो तानपुरा छेड़े और आवाज को खोले, रियाज करे?
0: जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो भगवान ने दी हुई आवाज होती है वो उम्र के 20 साल तक रह सकती है, उसके बाद उसमें कंपन आने लगेगी, उसमें वो जोर नहीं रहेगा। इसलिए हर सिंगर को सुबह उठ के रियाज करना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, जैसे कि सिगरेट पीना, इससे भी गले में सांस में फर्क पड़ता है, ये सब चीजें संभालनी चाहिए और रियाज करना बहुत जरूरी है। मेरी नजर में रियाज करना चाहिए क्योंकि आज तक मैं भी रियाज करती हूँ।
1: जी धन्यवाद आशा जी, आपने अपने अनुभवों के आधार पर संगीत साधना करने वालों के लिए एक अनमोल बात कही है कि स्वर की साधना बहुत आवश्यक है। और अब ये संगीत सरता कार्यक्रम के श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से एक भेंट वार्ता सुनी, भेंट कर रही थी डॉक्टर अचला नागर।
3: मित्रों, कई बार हमें लगता है ना कि लता जी, आशा जी यदि शास्त्रीय संगीत की कोई रचना गाएं तो कितना अनूठा लगेगा, लेकिन डॉक्टर अचला नागर से आशा भोसले की ये जो बातचीत हमने सुनी उससे कई बातें स्पष्ट हुई। उनके लिए शास्त्रीय संगीत तो संभव था ही, लेकिन नवरसात्मक प्रतिभा की पहचान बनाने वाली सुगम संगीत के समंदर की मलिका की ये आवाज जो है, इसकी जितनी दाद हम देंगे वो कम होगी। मित्रों, आइए आशा भोसले के गाए दो गीत के अंश सुनते हैं। पहले सुनिए कारवां फिल्म का गीत, जिसमें स्केल यानी सुर पट्टी बदलकर आशा जी ने क्या खूब गाया है।

और आइए अब सुनते हैं एक और फिल्मी गीत का अंश। फिल्म है विजेता और ये गीत पूरी तरह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है।

विविध भारती के खजाने से आज आप सुन रहे थे मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले से बातचीत। इसके साथ ही आज का हमारा ये संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम दुर्भाग्य चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झलवाड़।

किरणें के साथ भावों के साथ नई उम्मीदों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ चंद्रभागा चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सुप्रभात। मैं ललित वैष्णव और नमस्कार झालावाड़।

0: अपने अंतिम
1: सुबह हल्की ठंडक भले राहत देती हो, लेकिन दिनचर्या सूर्य की तपिश जीवन की वास्तविकताओं का एहसास करा देती है। कहीं पानी की चिंता, कहीं अधिक दिखावे की हो, ऐसे समय में जीवन को संतुलित रखने का संदेश है।

वाणी और कमाई संभाल करना विषय नहीं। बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज की ओर बढ़ रहा है, बना रही है, भू जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जिस पानी के लिए कहीं लोग मिलो चलते हैं, उसी पानी को कहीं हम बिना सोचे बहा देते हैं। याद रखिए, केवल प्रकृति का उपहार नहीं, ये आने वाले कल का आधार है। यदि हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो हमें कभी माफ नहीं करेंगे।

सोचे। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसकी वाणी से होती है। एक मीठा टूट और एक कटु वचन रिश्ते को तोड़ सकता है।

आज सुविधाएं लेकिन धैर्य कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया के दौर में लोग बिना सोचे बोल देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन याद रखिए तीर और शब्द एक बार तो वापस नहीं आते। वाणी में मिठास हो तो जाते हैं।

कमाई की मेहनत का सम्मान है। कमाई केवल पैसा नहीं होती, ये संघर्ष होती है। एक मजदूर का पसीना, एक किसान की मेहनत, एक पिता की जिम्मेदारी और माँ का त्याग। आज दिखावे की ओढ़ में लोग जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन समझदार वही है जो भविष्य के लिए बचत करना जानता हो। कमी छोटी हो लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। जीवन ही सबसे बड़ी समझदारी है जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वही आगे बढ़ता है।

0: आगे बढ़ेंगे, और लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा विराम। हाजिर होते हैं जल्द।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। तो दोस्तों और बात करते हैं आज के दिवस विशेष की। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 31 पूर्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।

लोगों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा ये केवल शरीर को नहीं पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। कई लोग शोर बात करते हैं लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत बन जाती है। ये घर की आर्थिक स्थिति और परिवार की खुशी छीन लेता है। यदि सेवन करते हैं तो आज ही संकल्प लें। जीवन अनमोल है, इस बुरी आदत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ा सुनते हैं ये शोर का बेहद सुंदर गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से

0: करीबी। जलवायु परिवर्तन सबको करता है, लेकिन लोगों को होता है। होते हैं खास प्रभावित होते हैं रहते हैं इलाकों में बसते हैं और होता है फिर भी होता है। जलवायु परिवर्तन भू कोशिशों को भी देता है। 2020 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी और गरीबी बढ़ी है।
1: श्रोताओं, आपका कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और एक और देश की माता पिता वैश्विक दिवस

वैश्विक दिवस भी मनाया जाता है। माता वे जीवन बनाने वाले होते हैं। एक माँ जो अपनी है, एक पिता जो अपने का त्याग कर संतानों के सब करता है, उनके त्याग के लिए सकता। आज दुनिया की दौड़ में कई बार बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं,

साथ हैं तो समझिए जीवन की सभी दौलत आपके पास है। माता पिता की जो स्वयं धूप में रहकर औरों को

Orada महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी का। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के इस मौसम में कई बार गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। तेज धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पीते रहें, नींबू पानी, छाछ और सेवन करें, हल्की सूती कपड़े पहने, सिर को कर बाहर निकलें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर तेज छांव में ले जाएं और चिकित्सक से सहायता लें। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम यदि हम सिर्फ बातें अपने जीवन में उतार लें, पानी बचाना, वाणी में मिठास रखना और कमाई का सम्मान करना, तो जीवन बहुत सुंदर और संतुलित बन सकता है। अपने माता पिता को समय दीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और समाज में सकारात्मकता फैलाइए, क्योंकि अच्छे विचार केवल सुनने के लिए नहीं होते, उन्हें जीवन में उतारने के लिए होते हैं। और अंत में दीपक तो अंधेरों में उजाला करना सीखो, नदी बनो तो लोगों की प्यास बुझाना सीखो, जीवन मिला है तो केवल अपने लिए मत जियो, कुछ ऐसा करो कि आपके होने से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं ललित वैष्णव लेता हूं आपसे अनुमति। नमस्कार, सुपर आपका दिन शुभ स्वस्थ और मंगलमय हो। नमस्कार, फलावर्त।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

करते हैं मुकेश खन्ना के गाए मेरा नाम जोकर फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत के बोल लिखे शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: झलावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेष कार्यक्रम जो कि दिल्ली के प्रसारित होगा 10:55 पर मन की बात। जी हाँ दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

0: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अब बचाव संभव है।
1: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
0: सही समय पर अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
1: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
0: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
1: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो।
6: मोहम्मद रफी और अशरफ उसले की आवाज में सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म का ये गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

अंतिम गीत जिसे हमने लिया फिल्म शिकार से, और साथियों की है फिल्म का, और इस गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: संगीत आकाशवाणी झालावाड का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: उर्दू में समाचार प्रसारित।
2: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में

0: सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने

0: पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को

0: आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन नौलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। सुनते हैं कवि अशोक सोनी से काव्य पाठ।
3: मित्रों, आप सब डग निवासी गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार एवं कवि अशोक कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज आपके बीच मैं 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, नशे विरोधी रचनाएं लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। सो आप इन रचनाओं से अपने सुनकर दिल में उतारें और नशे से दूर रहें, क्योंकि नशे से बहुत जीवन को धक्का लगता है, परिवार को धक्का लगता है, हमारा जीवन उजड़ जाता है, पैसे का नाश हो जाता है। इस तरीके से मैं चाहता हूं कि इन रचनाओं को आप दिल में उतारें। मैं रचना प्रारंभ कर रहा हूं। पहली रचना मेरी इस प्रकार है, मैंने 7 कुवेशनों को अपने मुक्तक के माध्यम से बांधा है, सो आप तक पहुंचा रहा हूं। कि दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, अरे दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, वो नाले में वो पड़े रे, नाले में वो पड़े रे, ने सुअर काटे गाल, कुत्ता मुंह चाट रहा है, वो यूं ही नाच रहा है और ढोल बाज रहा है, और बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही, घर नफरत करती नार धुआं से जला कलेजा, उठेगा तेरा जनाजा तो बीड़ी छोड़ दे राजा, और इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान, इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान, और यहाँ के बैठ गई गाल पिचक गए, यहाँ के बैठ गई गाल पिचक गए, मरने चला शमशान बिगड़ी जीवन की धारा, पुलिस ने डंडा हमारा, अब जेल में

मुंह में कीड़े पड़ जाते, दांत भी सब सड़ जाते और अर्थी पर वो चढ़ जाते। और गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रखी, गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रखी। और आए पुलिस के हाथ कभी तो, आए पुलिस के हाथ कभी तो लाते मारी, तीन फेफड़े सड़ गए प्यारे, रोते हैं दर्द के मारे, अब तुम जाओगे कारे। और बूढ़े बच्चे नर नारी सब खाते हैं जर्दा, बूढ़े बच्चे नर नारी सब खाते हैं जर्दा। और गली आंगन में थूकते रहते, गली आंगन में थूकते रहते, काम करो गंदा के घर में पैसे का टोटा, खाने को नहीं मिलता है रोटा, फिर काम करता क्यों खोटा। अगली रचना मेरी इस प्रकार है कि अरे नशा मत करो रे भैया, इससे बहुत हानि है, और मुंह बन जाता बंदर जैसा, ढल जाती जवानी है। नशा मत करो रे भैया, इससे बहुत हानि है, और मुंह बन जाता बंदर जैसा, ढल जाती जवानी है। अरे समझाते तुम्हें माता पिता, अरे समझाते हैं तुम्हें माता पिता, लेकिन तुमने कब उनकी मानी है। और नशा मत करो रे भैया, इससे बहुत हानि है, मुंह बन जाता बंदर जैसा, डल जाती जवानी है। अरे बच्चा था जब तू छोटा, बच्चा था जब तू छोटा, तब माता पिता ने क्या आशा लेकर पाला है। बच्चा था जब तू छोटा, तब माता पिता ने क्या आशा लेकर पाला है, कि जग में नाम करेगा रोशन, कि जग में नाम करेगा रोशन, यह जीवन उजियारा है। लेकिन लेकिन लेकिन बच्चे ने जवान होते ही नशा करने की मन में हानि है। अरे इसमें एक मत पियो रे भैया, इससे बहुत हानि है, मुंह बन जाता बंदर जैसा, डल जाती जवानी है। अरे फंसकर बुरी सोबत में, अरे फंसकर बुरी सोबत में तुमने धन घर का बर्बाद किया, फंसकर बुरी सोबत में तुमने धन घर का बर्बाद किया, और परिवार जन आए समझाने पर तुमने उन पर भी गलत शब्दों का प्रहार किया। और सच मानो मित्रों, हाँ हाँ, अरे सच मानो मित्रों, यदि आए पुलिस के हाथ कभी तो हवा जेल की खानी है। और नशा मत करो रे भैया, इससे बहुत हानि है, मुंह बन जाता बंदर जैसा, डल जाती जवानी है। अरे चोरी बदमाशी गुंडा गिर्दी करने पर भी खाने का नहीं ठिकाना है, चोरी बदमाशी गुंडा गिर्दी करने पर भी खाने का नहीं ठिकाना है। और पड़े रहते हो खुली सड़क पर, थूकता तुम पे जमाना है। हाय रे हाय इन नशेड़ियों का, हाय रे हाय इन नशेड़ियों का, बन चुका खून सब पानी है, के बीड़ी मत पियो रे भैया, इससे बहुत हानि है, तंबाकू मत पियो रे भैया, इससे बहुत हानि है, मुंह बन जाता बंदर जैसा, ढल जाती जवानी है, ढल जाती जवानी है। अरे पत्नी के मना करने पर नाक दुष्ट ने काटा है, और दोस्तों को बुला घर पर बेचारी की इज्जत को बांटा है, और बच्चों को जहर पिलाकर सुला दिया, अरे बच्चों को, हाँ बच्चों को जहर पिलाकर सुला दिया, अब कुल में देने को नहीं कोई पानी है। और नशा मत करो रे भैया, सिगरेट मत पियो रे भैया, तंबाकू मत पियो रे भैया, इससे बहुत हानि है, मुंह बन जाता बंदर जैसा, डल जाती जवानी है। अरे बीवी गई बच्चे मरे, अरे बीवी गई बच्चे मरे, और परिवार से नाता टूट गया, बीवी गई बच्चे मरे, परिवार से नाता टूट गया, और वो भीख मांगता इधर उधर, भगवान भी उससे रूठ गया। समझदार भाइयों समझ जाओ, अरे समझदार भाइयों समझ जाओ, ये सोनी कहता मुख जबानी है, के नशा मत करो रे भैया, इससे बहुत हानि है, और मुंह बन जाता बंदर जैसा, ढल जाती जवानी है, ढल जाती जवानी है, ढल जाती जवानी है। और मित्रों इसी संदर्भ में मैं अपनी अगली रचना एक गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बेटी का विवाह होता है, ससुराल जाती है, और उसके पति इसमें पीने लगते हैं, और वो अपने माँ को सारे हाल बता रही है, कैसे कि कसा चाले री घर की नैया, ए कसा चाले री घर की नैया, ए मैया ए जवाई थारो।

पी वाला गयो पुड़िया का साचा ले अब घर की नैया ओ मैया ए जो आई थारो पी वाला गयो पुड़िया। क्या कह रही है के घणो बुरो ए नशोर मैया सुन जे को किसो किसो घणो बुरो ए नशोर मैया सुन जे को किसो ने घर अडान को बिक गयो सब बिक्यो ए घर को हिस्सो घर अडान को बिक गयो सब बिक्यो ए घर को हिस्सो कर्जा वारा नित ही आवे रोज बजे जब बारा ने मारो बालम छोड़ के भागे हो जावे नौ दो ग्यारह मारो बालम छोड़ के भागे हो जावे नौ दो ग्यारह ए समझावा से समझे नहीं वी समझावा से समझे नहीं वी सगी ननंद का भैया री मैया ए जवाई थारो पी वाला गे पुड़िया का साचा लेगी घर की नैया ए बलम मारो पी वाला गे पुड़िया फूट गया है किस्मत मारा खूब मलाई जोड़ी री मैया फूट गया है किस्मत मारा खूब मलाई जोड़ी रोज समझाऊं वणी बौंदुने ना समझ में आवे थोड़ी अरे रोज समझाऊं बौंदुने में ना समझ में आवे थोड़ी ने छोरा छोरी भूखा मरे ऐसा बालम की माँ की साड़ी अरे वा भी बेच के पी ग्योरी पुड़िया वा भी बेच के पी ग्योरी पुड़िया ने सो गयो मृत्यु शैया री मैया ए जवाई थारो पी वाला गयो पुड़िया का साचा ले री घर की नैया ओ मैया ए बलम मारो पी वाला गयो पुड़िया का साचा ले री घर की नैया ए मैया यो जवाई थारो पी वाला गयो पुड़िया यो जवाई थारो पी वाला गयो पुड़िया। और मित्रों इसी संदर्भ में मैं अपनी अगली रचना प्रसारित कर रहा हूँ। नशा करते हैं तो उनके शरीर में दम नहीं रहता है। क्या कहा गया है कि नशा करने वालों के शरीर में रहता दम नहीं कि नशा करने वालों के शरीर में रहता दम नहीं अरे सो सो बार समझा दिया फिर भी होते बिल्कुल कम नहीं। नशा किसी का भी हो चाहे दारू बीड़ी सिगरेट चाय तंबाकू गुटखा नशा करने वालों के शरीर में रहता दम नहीं और सो सो बार समझा दिया फिर भी होते बिल्कुल कम नहीं। अरे नशा बुरा है दारू का अरे नशा बुरा है दारू का और पिया ना हो तो पी के देखो और कुत्ते से चटवा लो मुंह अपना और ये स्वाद भी लेके देखो और पड़े रहो नाली में यूं ही और पड़े रहो नाली में यूं ही और उठकर बोलो गम नहीं और नशा करने वालों के शरीर में रहता दम नहीं सो सो बार समझा दिया फिर भी होते बिल्कुल कम नहीं। इसमें पीने में तो यारों आहा आता क्या मजा अरे इसमें पीने में तो यारों आहा आता क्या मजा और मारो कुटो या उसको फिर कुछ भी दो सजा मारो कुटो या उसको कुछ भी दो सजा ऐसे नालायक गद्दारों की तो समाज में शक्ल देखने का धर्म नहीं। नशा करने वालों के शरीर में रहता दम नहीं पंजे छक्के अट्ठे ने तो यारों बात हद से गुजार दी पंजे छक्के अट्ठे ने तो यारों बात हद से गुजार दी सारे घर को लगा दाव पर बेचारी बीबी को घर से निकाल दी बुरी आदत है अब तो छोड़ो अरे बुरी आदत है ये सब अब तो छोड़ो और सोनी की तरह से नाता जोड़ो और मानो तो ठीक यारों बाटा लेकर अपना माथा फोड़ो यही सिखलाता मानवता का धर्म सही और नशा करने वालों के शरीर में रहता दम नहीं और सो सो बार समझा दिए फिर भी होते बिल्कुल कम नहीं सो सो बार समझा दिए फिर भी होते बिल्कुल कम नहीं। और मित्रों इसी संदर्भ में मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रचना के भाव अर्थ इस प्रकार है कि

लेगा वो पैसा बिगड़ेगा, धुआं निकलेगा, बीमारी लो घर पे बुलाई, बीड़ी सिगरेट ना पियो भाई।

लगे बुरी, अरे तुम्हें पीते शर्म क्यों न आई, बीड़ी न पियो भाई मैं दे।

लगे बुरी, अरे तुम्हें पीते शर्म क्यों ना आई, बीड़ी ना पियो भाई मैं दे।

जाए, ये सीना फट जाएगा गला कट जाएगा, ये सीना फट जाएगा गला कट जाएगा। अरे बेमौत मरोगे रे भाई।

बात मानो मेरी ये सोनी कहता खरी बात मानो मेरी थोड़ा सोच समझ लो रे भाई। बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना पियो भाई, मैं देता सुनाई ये पैसा बिगड़ेगा धुआं निकलेगा, ये पैसा बिगड़ेगा धुआं निकलेगा, अरे बेमौत मरोगे रे भाई।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं जो सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा में कवि अशोक सोनी से काव्य पाठ आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा साप्ताहिक बच्चों से जुड़ा कार्यक्रम फुलवारी।

0: आता है वही भविष्य जगमगाता है। बच्चे हैं देश की फुलवारी, इसमें है दुनिया प्यारी। बचपन रंगों की दुनिया है, इसे भरना हमारी है जिम्मेदारी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को उनकी रितिका दीदी का प्यार भरा नमस्कार। इन्हीं नन्हे फूलों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ही हमने फुलवारी कार्यक्रम में आज हम सब एक साथ जुड़े हैं। तो आइए उत्साह उमंग और खुशी भरे इस रंगारंग कार्यक्रम का करते हैं शुभारंभ और मिलते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से और उनके मुख से सुनते हैं कहानी और कविताएं। बच्चों, आप सभी का हमारे फुलवारी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम खेल खेल में नई नई बातें सीखेंगे, गीत संगीत सुनेंगे और आपके बाल मुख से प्यारे प्यारी कविताएं और कहानियां भी हम सुनेंगे और करेंगे खूब सारी मस्ती और मजाक आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक एक करके अपना नाम हमें बताइए। सबसे पहले आप बताइए।
1: मेरा नाम आराध्या है।
0: आपका?
1: मेरा

0: मगरान शर्मा है।
1: आप बताइए।
0: मेरा नाम शिवान शर्मा है।
1: आपका?
2: मेरा नाम ध्रुवी समाधिया है।
1: आपका?
3: इति।
1: अरे वाह, आपका तो नाम बहुत ही अच्छा है इति। तो आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे हमारे दोस्त हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, अभी तो आप सभी की गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी ना?
4: हाँ दीदी।
1: तो आप कर रहे होंगे खूब सारी मस्ती?
4: हाँ।
1: और मम्मी को कर रहे होंगे परेशान नई नई डिशेज बनाने के लिए?
4: हाँ।
1: तो चलिए आज हम मिलकर करेंगे खूब सारी बातें। और पढ़ाई भी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे?
4: कर रहे हैं।
1: के साथ खेलेंगे और जानेंगे कि आप कितना हम मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं और उसका आंसर देते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम, और उससे पहले आप सब मिलकर बजाइए ताली। खुश हो जाओ और मिलकर सारे मुस्कुराओ। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तम्बाकू क्या होता है?
4: हाँ।
1: अरे वाह, आप लोग तो बहुत ही अच्छे और जानकार बच्चे हैं। क्या आपने कभी किसी को सिगरेट या गुटखा खाते हुए देखा है?
4: हाँ।
1: और क्या ये सभी चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं?
4: नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और बच्चों, हर वर्ष वर्ल्ड नो तम्बाकू डे यानी विश्व तम्बाकू निषेध दिवस यानी 31 मई आज के दिन ये मनाया जाता है ताकि लोगों को तम्बाकू के नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सके। बच्चों, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे जुड़े ही प्रश्न मैं करूंगी और आप सभी कितने ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं ये आज हम देखेंगे। बच्चों, तम्बाकू एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो तम्बाकू के पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है। इसमें निकोटिन नामक तत्व होता है। तम्बाकू का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला और हुक्का आदि। देखा है कि नहीं देखा?
4: देखा है।
1: ये सब नशीले पदार्थों में आते हैं और इससे कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, दांत खराब होना और हृदय रोग जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, इस दिन लोगों को यह संदेश दिया जाता है कि तम्बाकू से दूर रहकर हम स्वयं अपने परिवार और समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। यही इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य है, ताकि हम लोगों को इस नशीले पदार्थ से दूर रख सकें। तो अब टाइम है क्विज़ का। आइए, अब मैं आपसे जानती हूँ कि आपने कितनी मेरी बातें ध्यान से सुनी है। मैं पूछूँ आपसे सवाल? चलो, सबसे पहले कौन बताएगा कि वर्ल्ड नो तम्बाकू डे कब मनाया जाता है?
0: दीदी मैं।
1: बताइए।
0: 31 मई।
1: वेरी गुड। अब हमें कौन बताएगा कि तम्बाकू के पौधे की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है?
0: दीदी मैं।
1: बताइए।
0: निकोटीन।
1: वेरी गुड। बच्चों, अगर कोई तम्बाकू लेने के लिए आपको कहे तो आप क्या करेंगे?
4: मना कर देंगे।
1: वेरी गुड। बुरी चीजों से दूरी, अच्छी आदतों से दोस्ती, ये हमारी सच्ची ताकत है और अच्छी आदतें हमें स्वस्थ रखती हैं। अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमेशा जीवन की हर कठिनाइयों से हम दूर रहते हैं। अच्छी आदतें हमें स्वस्थ, समझदार और अनुशासित बनाती है, इसलिए हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। आराध्य हमें बताएगी कि अच्छी आदतें क्या होती हैं?
2: अच्छी आदतों में सच बोलना, बड़ों का सम्मान और खेलना कूदना समय पर करना, ये सब होते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बातें हैं आराध्या ने हमें बताई। अच्छी आदतों के बारे में तो आराध्या ने हमें बता दी। अब हम जानते हैं कि बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं।
2: बुरी आदतों से हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाते हैं और अपना जीवन खराब हो सकता है।
1: बहुत ही अच्छी बात रूबी ने बताई। चलिए, अब हम चलते हैं शिवांश की तरफ और उनसे जानते हैं कि अगर कोई दोस्त आपको गलत काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे?
0: उसे समझाकर मना कर दूंगा।
1: वेरी गुड।
2: दीदी, आपने अभी तंबाकू पे बताया, उस पर मेरे को एक नारा याद आ रहा है जो मैंने पेपर में पढ़ा था, तंबाकू छोड़ो स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो।
1: बहुत ही अच्छी बात आराध्या ने हमें बताई कि तम्बाकू छोड़ो और स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि आपकी रितिका दीदी सिर्फ आपसे सवाल ही पूछते रहेंगे। ऐसा नहीं है, हमारा जो कार्यक्रम है वो हमारे बच्चों

0: कविता कहानियां और चुटकुलों के बिना अधूरा है। तो आइए अब चलते हैं आपकी प्यारी प्यारी कहानी और कविताओं की। और सबसे पहले हमें कौन सुनाएगा कविता?
1: दीदी मैं
0: आप सुनाओगे? सुनाइए।
1: मेरी कविता का टॉपिक है ईश्वर ने सबसे पहले पैर बनाया। नानी जी ने हमें बताया ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश्वर सबसे पहले प्यार। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े, इसी प्यार से सूरज उगता चंदा अमृत बरसाता तारों की टिमटिम है। इस सबका ये हरियाली वन बाग होगी, कली और सुमनों का खिलना, तितलियों भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलाना।
0: चलते हैं हम रुद्रांश की तरफ। रुद्रांश आप क्या सुनाएंगे हमें?
2: दीदी मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ।
0: सुनाइए।
2: पति पनीर की सब्जी में तो पनीर नजर ही नहीं आ रहा, पत्नी चुपचाप खा लो, कश्मीर पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है।
0: बहुत ही अच्छा चुटकुला हमें रुद्रांश ने सुनाया।
3: दीदी मेरे को भी रुद्रांश का चुटकुला सुन के एक चुटकुला याद आया, क्या मैं सुनाऊं?
0: बिल्कुल सुनाइए।
3: एक महिला थी, वो डॉक्टर के पास गई और बोली मेरा वजन कैसे कम होगा। डॉक्टर बोला अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाना। महिला बोली कब? डॉक्टर बोला जब कोई खाना खाने की पूछे तब।
0: बहुत ही अच्छा चुटकुला हमें ध्रुवी ने सुनाया भाई, क्लैप इसके लिए ताली बजाओ। अच्छा संदेश भी ध्रुवी ने दिया है कि यदि हमें अपना वजन कम करना है तो हमें खाना कम खाना चाहिए। अब आराध्या क्या सुनाएगी हमें?
4: मुझे भी एक चुटकुला याद आ रहा है। छोटी छोटी चीजें अक्सर तकलीफ देती है, आप पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं लेकिन सुई पर नहीं।
0: बहुत ही अच्छी बात आराध्या ने हमें कही। अब हम चलते हैं हमारे बिल्कुल छोटे से दोस्त की ओर, जो बहुत समय से बिल्कुल चुपचाप बैठा है। आप हमें क्या सुनाएंगे?
5: पोयम।
0: पोयम सुनाएंगे, सुनाइए।

0: Gracias, Señor, por la santa nombre a ti, Tolly, a ti, nombre de Nigli, Bolly, no de nombre de Dadaday, desde nombre de Dolladay.
1: बहुत ही अच्छी कविता इतनी ने हमें सुनाई। अब ये बताइए कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो आपको क्या करना पसंद है?
2: मैं बताऊंगी।
1: बताइए।
2: मेरे को बैडमिंटन खेलना पसंद है।
1: आपको?
3: मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है।
1: आपको?
4: मुझे रीडिंग करना पसंद है।
1: आपको रीडिंग करना पसंद है? आपको?
5: फ्री समय में क्राफ्ट की चीजें करना।
1: और इति को?
6: टीवी।
1: आपको टीवी देखना पसंद है? ये तो क्या है, सारे बच्चों का शौक होता है।
7: दीदी, मेरे को डांस करना, गाने सुनना बहुत पसंद है।
1: अच्छा, आप लोगों को गाने सुनना पसंद है?
8: हाँ।
1: तो क्यों ना हम भी एक गाना सुन ले मिलके?
8: हाँ।
1: तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: अभी हमने सुना ये गीत, आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा।
0: हम चलते हैं ध्रुवी की तरफ, जो बहुत देर से हमसे कुछ कहना चाहती है। बताइए ध्रुवी, क्या कहना चाहते हैं आप?
1: मेरे को एक कहानी सुनानी है आपको।
0: बिल्कुल सुनाइए।
1: एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। उसे तली भुजी चीजें खाना बहुत पसंद था। वह रोज चिप्स, मिठाई और ठंडी बोतल पीता था, लेकिन वह फल, हरी सब्जी और दूध से दूर भागता था। धीरे धीरे मोहन कमजोर होने लगा, खेलते समय जल्दी थक जाता और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। एक दिन उसकी दादी ने उसे

0: अच्छी सेहत सबसे बड़ा धन होता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तुम खेलोगे, पढ़ोगे और खुश रहोगे। दादी ने मोहन को रोज सुबह जल्दी उठना, दौड़ लगाना और पौष्टिक खाना खाना सिखाया। अब मोहन दूध, दाल, हरी सब्जियां और फल खाने लगा। कुछ ही दिनों में वह ताकतवर और खुश रहने लगा। स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में भी वह प्रथम आया। तब उसे समझ आया कि अच्छी सेहत ही असली खुशी है। सीख, पौष्टिक भोजन और रोज व्यायाम करने से शरीर मजबूत और मन खुश रहता है।
1: बहुत ही अच्छी कहानी ध्रुवी ने हमें सुनाई। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना कि सेहत सबसे पहले। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम खुश रहेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने?
2: हाँ दीदी।
1: इसलिए रोज साफ सफाई से रहें, पौष्टिक भोजन खाएं, समय पर सोएं और साथ ही क्या जरूरी है, खेल कूद करना, क्योंकि अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा, सही?
2: हाँ।
1: आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद। इसी खुशी और मुस्कान के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते बच्चों।
3: नमस्ते दीदी।
2: हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: बच्चों, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम फिर मिलेंगे।
4: महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अब बचाव संभव है।
5: अब ये कैंसर टाला जा सकता है, बस एक सही कदम,
4: सही समय पर अपनी 9 से 14 वर्ष की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित और लंबी उम्र का आशीर्वाद दें।
5: ये टीकाकरण सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क किया जा रहा है।
4: आइए मिलकर बेटियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें और सर्वाइकल कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।
5: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे श्रोताएं बच्चों के बाल मुख से अच्छी अच्छी कविता कहानी और आनंद लिया हमने उनके द्वारा सुनाए गए चुटकुलों का। तो आइए, बच्चों का जो ये कार्यक्रम है बिना मनोरंजन के अधूरा है, तो एक बार फिर से हम चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

बच्चों, अभी हमने गीत संगीत का आनंद लिया और आप सभी हमारे इस फुलवारी कार्यक्रम के छोटे छोटे फूल हैं, नन्हे मुन्ने। आपका विशेष ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि आपकी मासूम मुस्कान, आपकी प्रतिभा और आपकी कल्पना शक्ति ही इस संसार में आगे चलकर इस संसार को रंगों से भर सकती है। छोटे बच्चे बचपन की खुशियां संजोए भविष्य को सुंदर बनाते हैं। और बच्चों, अभी जो गर्मी का बहुत तेज है, तो उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको बार बार पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे। और जितना हो सूती कपड़े आपको पहनने चाहिए, ताकि आपका जो शरीर है वो ठंडा रह सके। और अगर कभी आपको बाहर जाना पड़ जाए, वैसे तो आपको बाहर नहीं जाना है विशेषकर सुबेरे 11 से लेकर शाम को 4 बजे तक, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना पड़ रहा है किसी विशेष कारण से, तो आपको अपना सिर धूप से बचाकर जाना चाहिए। और जितना हो ताजे फल और पौष्टिक भोजन आपको

खाना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और मौसमी फल, ये सभी फल आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। और जैसे नींबू पानी है, छाछ है, नारियल है, आदि का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपकी तबीयत खराब हो या आपको चक्कर आए या अत्यधिक प्यास लगे या कमजोरी हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको किसी से बात नहीं छुपानी चाहिए। बच्चों, आप सभी को गर्मी से बचने के लिए, जैसा मैंने कहा कि बार बार पानी पीना चाहिए, बच्चों इसी जानकारी के साथ दीजिए अपनी रितिका दीदी को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम फुलवारी। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पेश है न्यूज डेस्क से मन की बात कार्यक्रम पर डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: साल 2014 से शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों से संवाद का एक प्रभावी मंच है। इसमें प्रधानमंत्री सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते हैं, साथ ही आम नागरिकों की उपलब्धियों और प्रेरक कहानियों को भी सामने लाते हैं। ये कार्यक्रम जन भागीदारी को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हर महीने के अंतिम रविवार को ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शौर्य वाटिका खुला नौसेना संग्रहालय है। श्री सिंह ने बताया कि नौसेना को दुश्मन पर निरंतर दबाव बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी और ताकत के साथ अरब सागर में तैनात की।
3: आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: कार्मिक लोक

0: शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2,00,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: फुलेरा के पास हिरनौदा गांव में थार ड्राईपोर्ट बनाया गया है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल इसका उद्घाटन किया। ये हस्ती पेट्रोकेमिकल और शिपिंग लिमिटेड HPCSL की इकाई है। इससे सड़क और रेल मार्ग के जरिए कंटेनर आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विकास और निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक स्थानों पर जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 92,000 से ज्यादा जल स्रोतों और 42,000 से अधिक सरकारी भवनों की सफाई की गई। 52,000 से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया। वहीं हरियाणा राजस्थान में पौधरोपण के लिए 36,000 से ज्यादा पिट खोदे गए। साथ ही करीब 32,000 कलश यात्राएं निकाली गईं। अभियान के तहत आज प्रभात फेरी, रैली, श्रमदान, बावड़ियों की साफ सफाई करने के साथ ही नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। वहीं कल खेती संबंधी कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला। इससे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अलवर में रेत का बवंडर आया। इस दौरान 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और समूचे वातावरण में धूल का गुबार छा गया। पीली काली आंधी से दिन के समय ही अंधेरा हो गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधड़ से कई जगह घरों और औद्योगिक क्षेत्रों में लगे टीन शेड और सोलर पैनल उड़ गए। विभिन्न स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं खरीद केंद्रों पर रखी गेहूं की बोरियां भीग गईं। उधर अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, चूरू और बारा में अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। जयपुर जिले में ग्रामीण इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरे। बरसात से तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों में आंधी बरसात का ऑरेंज अलर्ट बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की आत्मा साहित्यकारों में बसती है। साहित्य केवल शब्दों का सृजन नहीं है, बल्कि संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना का संवाहक है। श्री बिरला कल कोटा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महाअधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लेखकों से प्राचीन साहित्य कृतियों के डिजिटलीकरण करने का आग्रह किया, जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जा सके।
2: भारत के साहित्यकार, कवि, लेखकों ने अलग अलग कालखंड के अंदर भारतीय संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया, देश में रचनात्मक दिशा दी, रचनात्मक दृष्टिकोण दिया और रचनात्मक विचार दिया। आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहित्यकार, गीतकार, लेखकों से जो उनके ज्ञान के भंडार हैं, उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि हम भारतीय संस्कृति के विचार दृष्टिकोण को अपने जीवन में लाकर देश और राष्ट्र की प्रगति और देश राष्ट्र की सेवा में लगे रखें।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय अपील का

0: अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना है। इस उपलक्ष में प्रदेश में 22 मई से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। 30 मई तक चलाए गए इस अभियान में 2000 से ज्यादा चालान किए गए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। आज प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध संबंधी परामर्श सत्र रखे गए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने लोगों से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का और अन्य नशों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी टक्कर होगी। ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत 5 दिनों में 7,30,000 से अधिक जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हुए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदला, कई जिलों में रेतीले बवंडर और अंधड़ के साथ बरसात। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज, प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर तंबाकू निषेध परामर्श सत्रों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। लीजिए श्रोताओं, हम आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनज़र प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबैको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना के आवाज़ में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अनिल विश्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल विश्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल विश्वास के पिता थे जेसी विश्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी, और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल विश्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल विश्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था, और इस तरह अनिल विश्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल विश्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल विश्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है, और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल विश्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था, और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार

1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

0: जो हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
1: सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल बिस्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर

लर्जिश के बिना गा रही थी। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल विश्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल विश्वास के लिए कई गाने गाए।

0: वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

0: कहता है।
1: लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनकी करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहां उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम
1: से बातचीत कर रही हैं विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो

0: अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है। तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
1: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची। हाँ,
0: जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी, हाँ। बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
1: अच्छा।
0: और कुछ चीज़ें थी जो मेरी थी
1: जी,
0: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको, सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो। और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
1: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं। और गुंजा
0: करती रहूंगी।
1: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी। और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
0: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
1: अच्छा।
0: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
1: जी,
0: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
1: अच्छा।
0: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी,
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ,
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री? आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
0: हाँ।
1: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी,
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि हाँ, साधना गाओ। लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: क्या है ना।
0: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद
0: आवाज। हाँ, बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य, अभिनय, बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए होंगे।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्यकी हैं उस जोगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूं।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। तो उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी इसे।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: और क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक कटक के डांस किया उसने। फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए।

0: किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ।
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही सच और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है,
0: हाँ।
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी,
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो, पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को, हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है, और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। हाँ। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
1: हाँ,
0: एक
1: तो
0: ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी,
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता, नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
0: जी,
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज़ नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूँ
0: जी,
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना
1: ही एक्टिंग है। हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
0: हाँ, जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं,
0: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
1: और जी, बहुत जी, मीठा संगीत है,
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। हाँ, तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में। और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें

0: रखे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा,
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है, तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
0: आदतन अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है, बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे। हाँ।
0: नहीं, वैसे आप बहुत हॉट है, शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
1: नदिया के पार बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी,
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम, मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
0: वही तो सेम फिल्म।
1: हाँ, सेम फिल्म। लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी, जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी,
1: से
0: जी।
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
0: जी,
1: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई, तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
0: जी,
1: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद।
0: हाँ, जी जी, उसके बाद ही।
1: हाँ, तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
0: जी,
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
0: अच्छा,
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ, तो वो फिल्म की। उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
0: हाँ।
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब
0: जी, जी।
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो ये पिछले 5 सालों की जुगनी
0: जी, जुगनी
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी फिल्म,
1: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब।
0: हाँ।
1: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे, लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
0: जी।
1: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
0: मिलके काम कर। हाँ, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
1: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
1: मुझे ये लगा कि वो कम्फर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे।
0: हाँ।
1: कि ऐसा ही करना है, और कई

0: कई जगह तो आए, पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी
2: हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम
2: राजकुमार ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
2: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम। हाँ। और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
2: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार में जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा

0: मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उस लिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
1: हाँ।
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए। हाँ। थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है।
1: हाँ।
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म में उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइटली तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी जी, लेकिन जी,
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म। हाँ। जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहाँ की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो

0: आती थी उन सबसे, तो
1: मतलब आप वो चाट और लस्सी
0: वो
1: खाते पीते
0: खाते पीते।
1: बड़ी
0: हाँ,
1: हुई जी।
0: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। सिर्फ
1: अच्छा
0: मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने
1: अच्छा
0: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे ये
1: सरदार
0: यहाँ,
1: खड़े हैं और
0: तो हमारा
1: भोजपुरी बोल रहे
0: पंजाबी
1: हैं।
0: एक्सेंट है ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी,
1: जी
0: हाँ ये काफी फर्क है।
1: जी
0: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए, अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या,
1: अच्छा,
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
0: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते हैं,
1: जी
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
1: हाँ
0: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
1: जी
0: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था,
1: जी
0: चंदन चंदन ऐसा,
1: बहुत अच्छा।
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत के?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका
0: हाँ
1: डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी,
1: होगा।
0: हाँ
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते समय?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
1: जी बहुत
0: ये
1: खूबसूरत गीत
0: हाँ,
1: है।
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
1: जी
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो।
1: बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है। एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है।
0: 30 गाने,
1: 30 गाने में, और सुना रहे थे ये पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़िए नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है। साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड। उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकेंड में।
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार।
1: दादा कह रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया। तो उनसे,
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी ने
1: कहा से, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
0: अच्छा,
1: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
1: ये बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव।

0: उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
1: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, हाँ, लगेगी तो लगे, संभाल लेना। हाँ। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना नई रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
0: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी।
1: हाँ।
0: तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
1: अच्छा,
0: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो, अगर अच्छा है तो।
1: अरे वाह,
0: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। हाँ। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
1: एक
0: बोल,
1: बार
0: दिया।
1: में बोल दिया।
0: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो, तो
1: यानी आपको हाँ, मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह।
0: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
1: जी,
0: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
1: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे, हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
0: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
1: अच्छा,
0: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
1: जी।
0: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं
1: जी,
0: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
1: जी,
0: अनुपम जी ने,
1: बहुत बढ़िया।
0: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर, जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
1: हाँ, तो उस समय वो चल,
0: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
1: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
0: नहीं, मैं करती भी नहीं,
1: क्योंकि मेहनत करो अपनी,
0: अपनी मेहनत करो,
1: ये बहुत अच्छी बात है।
0: क्योंकि अपने मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
1: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
0: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
1: जी,
0: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी को ही, अच्छा तो बोले 100%।
1: हाँ,
0: अब देखते हैं क्या होता है।
1: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
0: हाँ।
1: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं।
0: हाँ,
1: ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी,
0: हाँ,
1: बड़े पवित्र लोग यहाँ, हाँ, पर आए हैं।
0: हाँ,
1: आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की। और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी। पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
0: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
1: जी।
0: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये
1: होता
0: ख्याल
1: है।
0: होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए।

0: और बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माए
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि हाँ। आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ।
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियाँ वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें, तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी ये पहेली
0: जी,
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। अच्छा। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
0: अरे वाह।
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहेली,
0: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ।
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा लगता है विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता अच्छा है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: श्रोताओं, यह सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर।

आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। श्रोताओं, हूँ थोड़ी देर में आप सुनेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, जिसे हम दिल्ली से अनुभव करेंगे।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए

0: सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
2: नमस्कार सर। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
1: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो आप अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
2: हाँ

0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह कितनी मेहनत करते थे। मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियाँ करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है।

0: इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है, और बिहार झारखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई

किसानों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।

साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत

उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी

0: से सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला इस फिल्म का गाना। गीतकार हैं पंची जालुनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं केके और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री

कार्यक्रम का अगला गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में नितिन उरेकवार का लिखा हुआ, इसे आवाजें दी हैं केके और सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है रूढ़।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं।

0: वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: यह आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज़ केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वीशा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

0: इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। दोपहर 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये जयपुर अजमेर केंद्र है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। श्री मोदी आज आकाशवाणी के मासिक कार्यक्रम मन की बात की 134वीं कड़ी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्म हवाओं के इस मौसम में अपना ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए सरकारी विभागों ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसे नहीं भूलें।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आम की विभिन्न किस्मों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों के आते ही आम हर

0: भर में चर्चा का विषय होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश के परंपरागत पेय पदार्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना झलकती है। राजस्थान में छाछ हर खाने की साथी होती है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में देश की उपलब्धि से की। उन्होंने 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूरकी से भी बातचीत की। अपनी हाल ही की नीदरलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां आयोजित एक समारोह में चोला काल की ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। केरलम में चलने वाले स्विमिंग क्लब के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमें बड़ी सीख देता है कि सेवा करने के लिए अच्छा इरादा और लगातार प्रयास जरूरी है।
1: साजिद वलासेरी जी का जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर युवाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इसके बाद उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान कल से शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एक महीने के इस राष्ट्रीय अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जन जागरूकता से जोड़ा जाएगा। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि ये अभियान उर्वरकों के प्रयोग और मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी और गांवों को सीधे योजनाओं का लाभ दिए जाने पर केंद्रित होगा। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई है। उदयपुर जिले में 2 स्थानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई कर 18,000 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभ मंगला ने बताया कि ये मिलावटी घी टैंकों और विभिन्न कंटेनरों में पाया गया। कार्रवाई के दौरान फूड कलर की बोतलें भी बरामद की गई। टीम ने सवीना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से मिलावटी घी और अन्य दुग्ध उत्पादों का करीब 42,000 किलो से अधिक का स्टॉक भी पकड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज, वहीं 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट बताया है। मौसम का ये बदलाव 3 जून तक बना रह सकता है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अलवर सहित कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज आंधी चली। इससे दिन में ही रात सा अंधेरा छा गया। कई जगह आसमान धूल के गुबार से ढक गया जिससे कुछ मीटर दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। जयपुर में भी कल शाम आंधी चली, वहीं जोबनेर इलाके में झमाझम बरसात के साथ ओले गिरे। आंधी बारिश से तापमान में 9 से 12 डिग्री तक की गिरावट आई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम भरावड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं, हम आपको फिर से ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

की फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ही विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब। देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछोह में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछोह प्रेमी युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं, और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी ज़िंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की ज़िंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं, बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी फिर नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं, बिछड़े से भी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही हैं, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोच कर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

जी तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो कभी दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना।

रातें जाकर कटती हैं, आंखें बंद करते ही उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। मुझे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे, मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात, और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारा में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की ज़िंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघकर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है,

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ता उम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूँ मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंद गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये आपने अपनी जिंदगी

में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो, तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं? शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं, और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दूरियां बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत, आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और रवि की धुन।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां माँ लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों

आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें ज़रा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ, लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया। और ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है। इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाज़त। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाज़त नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।
1: I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is making all efforts to preserve heritage sites of the country. Highlights return of ancient Chola era copper plates to India during his recent visit to Netherlands. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister urges people to stay safe during summer heat, promotes traditional Indian cooling drinks, and lauds farmers for taking indigenous mango varieties to global markets. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani says Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity. Admiral Krishna Swaminathan assumes charge as a new Chief of Naval Staff. U.S. President Donald Trump says United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option if negotiations fail. In badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Indonesia in the men's doubles final of Singapore Open today. And in IPL cricket final, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru all set for epic title clash in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that three rare copper plates

0: कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष है। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है।

0: और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
3: नेवी, एयरफोर्स,
4: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
3: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी।
1: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: मियता किरोली, दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है ही।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी।

0: अनिष्का और तन्मय गजबिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: जादूगर
1: Ashwani, where we bring you inspiring stories of Padma awardees for the year 2026, we present a special program on Bhekliya Latkya Dhinda from Maharashtra, a passionate
2: लीजिए सुनिए पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी. ये प्रस्तुति हमारी दिल्ली केंद्र की

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस फ्रीक्वेंसी पर अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 3:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो किड्स। मगर उससे पहले समय है फिल्म संगीत का, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा तराना। फिल्म है सपनों का सौदागर, गीत को गाया मुकेश शारदा और साथियों ने।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डिजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ, मैं सोचता हूँ दो हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
2: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
1: नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाया तो कैसा रहेगा?
2: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
1: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा।

0: तेजी
1: छोड़ दीजिए ना।
0: अरे अरे सुनो तो।
1: नहीं सुनती।
0: ओफो, अरे बात तो सुनो
1: बेनी। देखो देखो तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
0: ओ डेजी डेजी माय लव। डेजी हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो।
0: सुनो मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
2: क्यों तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
0: अच्छा बाबा हम दोनों जैसा हैं।

0: डिजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों हो?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चलें।
1: नहीं

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन बहुत अशांत।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की।
0: ओह डेजी, माय गॉड।

0: गुस्से में मां गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा है। रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई, उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूं मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने कुरूप बच्चे का पिता होने का भार नहीं उठा सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा। इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
2: अब छोड़ो, डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
3: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
2: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्यों जी?
0: जी
3: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
0: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
3: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसी फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
2: अरे भाई, वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
3: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा, लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा। ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
0: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
3: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
0: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
2: अरे भाई, बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
3: चलिए एक बार मैं भी देख लूं। ओ, लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है।
2: वेल दैट डजंट मैटर डॉक्टर।

0: तो स्लाइट फीवर ओनली, मैंने दवा दे दी है वैसे।
1: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है, चलो डेजी।
2: ओके अच्छा
0: बाय डॉक्टर, बाय।
2: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
3: जब तक जरूरी होगा।
2: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
3: अपने लिए।
2: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
3: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
2: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
3: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
2: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
3: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
2: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
3: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
2: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
3: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
2: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
3: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
2: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
3: मैं घसीट लाया? ये कहो, बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
2: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
3: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
2: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
3: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
2: तुम्हें क्या हो गया है?
3: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा। ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
2: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
4: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
2: अभी बाहर गए हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
4: कैसी शंका?
2: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
4: डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
2: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
4: नहीं।
2: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कोई शंका है।
4: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
2: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
4: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
2: आप ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
4: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
2: बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
4: क्या?
2: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
4: क्या?
2: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
4: बोलो।
2: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
4: मैं?
2: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है।

0: प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी नहीं, ये ठीक नहीं है, बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है, मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। I'm sorry,
0: please, doctor, please, मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है,
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ डॉक्टर रामदास,
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, Dr. Ramdas? आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
1: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
3: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
1: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
3: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
3: डॉक्टर डॉक्टर दैट वाज मेयर डेथ, एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
1: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
3: डॉक्टर नो, नो डॉक्टर,
1: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं, डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
3: नो नो नो,
1: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ

0: मित्र के स्नेह से उरण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया, क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर, लेकिन उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: ओ, बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया, भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: क्यों
0: नहीं कहूंगा?
1: ठीक है डॉक्टर,
0: क्योंकि न कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर रॉबिन्स, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डिजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
2: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
1: डेजी,
2: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
1: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
2: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
1: नहीं, नहीं, डेजी,
2: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ले।
1: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
2: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह सकते।
1: नहीं नहीं, डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
2: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक

0: कि एक शब्द मैंने सुन लिया है।
1: ओह माय गॉड,
0: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
1: नो,
0: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
1: विदा?
0: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
1: नहीं,
0: था।
1: डेजी, डेजी।
0: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। आपको क्या हुआ है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
1: डेजी, ये मेरी नसें टूट रही है। डेजी, डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
0: नहीं लॉरेंस, नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो, करो बेटा, करो बेटा, डॉक्टर। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई, डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: कभी छांव कभी धूप तो कभी छांव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। ये पंक्तियां लिखने वाले कवि और गीतकार थे प्रदीप जी। जी हाँ, वही प्रदीप जिन्होंने लिखा दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जिनकी कलम से निकला ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जिन्होंने कहा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, वही कवि प्रदीप, यानी शब्दों की आकाशगंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, यानी जब जब हम गंगा जमुनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब हमें महान कवि प्रदीप जी को, उनकी रचनाओं को याद करना ही होगा। और आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को ही याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक

0: हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया
0: जी,
1: क्योंकि विविध भारती से हमारा नाता इतना पुराना है, आप ये समझ लीजिए कि हम उसी के साथ बड़े हुए हैं
0: जी,
1: है ना। मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के लोग, ऐसा नहीं होगा कोई भी कि जिसने विविध भारती नहीं सुना हो,
0: होगा
1: तो ये हमारी रग रग में बसा हुआ है
0: जी।
1: तो खूब धन्यवाद, आभार आपका।
0: जी बिल्कुल, आपका भी आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त आज हमें दिया है। और आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपके पिता और राष्ट्रकवि प्रदीप जी के बारे में।
1: जी,
0: सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कैसी हैं।
1: मैं तो अच्छी हूँ
0: मितुल जी। आप राष्ट्रकवि गीतकार प्रदीप जी की सुपुत्री हैं और आप अपने पिता जिनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था उनके बारे में हमें बताइए कि उनका नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी से प्रदीप कैसे पड़ा और किस तरह का पिता का प्यार था, किस तरह का व्यवहार था और आपके घर परिवार में कौन कौन थे।
1: सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी मतलब कवि प्रदीप, उन्होंने अपनी जो लेखनी की शुरुआत की, मतलब लिखना शुरू किया अपने स्टूडेंट्स डे से, जब वो विद्यार्थी थे, इलाहाबाद में पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो इलाहाबाद और लखनऊ की उनकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हिंदी भाषा के मतलब जो एक उच्च स्तर का उनकी जो लेखनी थी वो बहुत उच्च स्तर की हिंदी थी। और वो कवि थे
0: जी,
1: कवि सम्मेलनों में जाया करते थे विद्यार्थी जीवन में भी। तो उनका जो उन्होंने उपनाम रखा रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, तो प्रदीप उनका उपनाम था।
0: अच्छा जी।
1: और ज्यादातर लेखक हैं, कवि हैं, वो अपना उपनाम रखते
0: रखते
1: हैं।
0: ही हैं।
1: तो जब कवि थे और वो कवि सम्मेलनों में जाते थे तब तो वो नाम चलता था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप।
0: अच्छा,
1: लेकिन जब वो मुंबई आए, मुंबई तो वो घूमने के लिए आए थे और तब तो मुंबई नहीं बंबई थी
0: जी, बिल्कुल।
1: और 1939 में वो बॉम्बे आए घूमने के लिए, ऐसा कोई नहीं था कि यहाँ पर वो बस जाएंगे, लेकिन ऐसा जैसे बोलते हैं ना कि नियति डेस्टिनी, तो उन्होंने उनको मुंबई तक खींच के ले आई उनकी नसीब। और ऐसा हुआ कि यहाँ पर उनको एक छोटे से कवि गोष्ठी में सम्मिलित होने का उस वक्त मौका मिला। तो वो छोटी सी कवि सम्मेलन नहीं था
0: जी,
1: बहुत बड़े बड़े यहाँ के नामी कवि जो मुंबई के थे वो उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये जो लड़का आया है इलाहाबाद लखनऊ से, तो हम उनकी कविता सुनेंगे। तो यहाँ के जो बड़े कवि बैठे थे वो सब गुजराती थे।
0: अच्छा जी।
1: और हिंदी कवि वो सिर्फ एक थे, उन्होंने कहा मैं तो हिंदी में कविता कहूंगा। तो कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग तो सब सुनेंगे आपकी कविता। तो उन्होंने वहां पर अपनी कविता सुनाई। तो उस कवि सम्मेलन में हिमांशु रॉय नाम के जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनके मैनेजर वो वहां पर थे
0: जी,
1: रावल जी।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने उनको सुना, उन्होंने जाकर के हिमांशु रॉय को बोला कि बहुत अच्छा एक कवि आया हुआ है घूमने के लिए, तो क्यों ना हम उनकी कविता सुने और हो सकता है उनकी कविता का हम उपयोग करें अपनी फिल्मों में। तो प्रदीप जी को बुलाया गया हिमांशु रॉय के ऑफिस में
0: जी।
1: वहां पर देविका रानी बैठी थी, हिमांशु रॉय बैठे थे, अशोक कुमार बैठे थे, सब लोग बैठे थे। वहां पर प्रदीप जी को कहा कि आप अपनी कविता सुनाइए। बोलते मैं तो कवि हूँ भाई, मुझे आपके फिल्मों विल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो लगा कि आपने मुझे बुलाया है तो आप मुझे हीरो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सुनाइए तो सही। फिर सुनाया अपनी शैली में, उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। और वो इम्प्रेस ऐसे हो गए कि अंदर जाके हिमांशु रॉय ने कहा कि मुझे ये कवि वापस नहीं जाने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्मों में ये के। प्रदीप जी तो घर आ गए, उनको पता नहीं था कि पीछे पीछे क्या हुआ।
0: अच्छा।
1: तो वापस से वो मैनेजर आए उनके पास दूसरे तीसरे दिन कि भाई आप वापस मत जाइए, थोड़ा सा हमारे साथ आप फिर से चलिए ऑफिस में और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप जी को वो लेके गए, हिमांशु रॉय ने कहा हम आपकी कविता को हमारे फिल्म में आप लिखिए हमारे लिए। प्रदीप जी ने कहा मैं कोई तुक्कड़ कवि नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ और कवि फिल्मों में कैसे लिख सकता है। बोलते कोशिश तो करिए हमारे लिए, एक फिल्म करिए, नहीं जमा आप तो चले जाइए। तो फिर वो एक फिल्म में जब उन्होंने लिखा और वो फिल्म में इन्होंने जब सुना कि ये तो

0: अलग तरीके का जो एक राइटिंग है। तो फिर प्रदीप जी को उसमें साइन भी कर लिया गया और उसमें वो कवि बन गए, गीतकार
1: बन गए। थी कौन से अब, सन की बात है और किस फिल्म के लिए उन्हें लिया गया?
0: कंगन फिल्म उनकी पहली थी। तो अब आपके सवाल पे आती हूँ मैं
1: जी,
0: कि आपने कहा कि वो रामचंद्र नारायण द्विवेदी में से कवि प्रदीप कैसे बन गए।
1: बिल्कुल,
0: उनका जो उपनाम था प्रदीप, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई आपका नाम तो बहुत बड़ा है, वो तो अजीब सा लगता है जब स्क्रीन पे आता है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी प्रदीप, तो ये ठीक नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रदीप कर लेते हैं। तो इसमें से वो सिर्फ प्रदीप हो गए, है ना। और तो कवि प्रदीप कैसे हुए? उस जमाने में उसी दौरान एक और नाम था प्रदीप कुमार
1: जी, एक्टर
0: एक्टर। तो लोगों को कंफ्यूजन होता था कि ये प्रदीप और प्रदीप कुमार, अभी भी काफी कंफ्यूजन होता है। तो प्रदीप कुमार और कवि प्रदीप के कंफ्यूजन में फिर सोचा कि ये क्या करें, तो बोलते प्रदीप के आगे कवि लगा दो। तो कवि प्रदीप अलग हो गए
1: और
0: प्रदीप कुमार अलग हो गए। तो ये आपके सवाल का जवाब है।
1: तो मितुल जी, आपसे हम बातें कर रहे हैं, इस बीच एक गाना सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: एक गाना तो सुनना ही चाहिए, सूरज रे जलते रहना।
1: वाह क्या बात है,
0: हेमंत कुमार की आवाज में। ये भी आप सुनिए कि हेमंत कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कवि प्रदीप एक कैसा गोल्डन वो है साथ में,
1: त्रिकोणीय व्यक्तित्व।
0: हाँ
1: हाँ जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं। हाँ। प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो कवि प्रदीप तो बने, लेकिन वो पिता कैसे थे, घर का माहौल कैसा था, घर में कौन कौन सदस्य थे, और जो मितुल नाम की उनकी सुपुत्री आज हमारे सामने बैठी है, बाल्यावस्था में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा पिता के साथ रहकर, घर में किस तरह का माहौल रहता था।
1: हम दो बहनें थी, मेरी बड़ी बहन सरगम और मैं छोटी, और हमारे बीच में 10 साल का

0: फर्क था
1: अच्छा
0: दोनों बहनों के बीच में। तो मैं छोटी और दीदी ज्यादातर बापू के साथ बहुत घूमी, उनके जो शुरुआत की जो फिल्में थी तो उसके प्रीमियर्स में या उनके कोई कोई ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे उसमें। मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफ़ी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
1: जाना
0: थी।
1: हुआ जी।
0: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा। तो इसीलिए हम काफ़ी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे
1: जी।
0: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा जैसे कोई प्रीमियर है या कोई जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है तो उसमें हम जाते थे। तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति
1: और सिद्धांतवादी।
0: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको। तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड लेना ही बंद कर दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग मेन, मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती
1: जी।
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था।
1: हाँ।
0: तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: अच्छा जी।
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें।
1: इतनी फ्रीडम थी।
0: फ्रीडम, हाँ। तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी।
0: बहुत बहुत बहुत सारी बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं। तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ, आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे। तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी, वो गर्म है,
0: मैं गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी, दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा।
1: अच्छा।
0: मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियाँ तो दी होगी, लेकिन

0: कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब।
1: अच्छा।
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूं।
1: अरे
0: तो
1: हाँ,
0: उन्होंने बोल दिया वहां पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया। वहां मेरी दादी, मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहाँ से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा, अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये, उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ़ कीजिए, लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह,
0: यूनियन
1: हाँ
0: था
1: वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ।
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक
1: उस
0: पानी बन के
1: दाम्पत्य
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी, लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह, उनकी
0: मतलब
1: शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: भी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रहीं, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं। लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी बिल्कुल
1: वो और बड़ी मेरी माँ के कारण,
0: बहुत बड़ी बात। और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी, जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम, इंदौर, वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू, उसको भेजा इलाहाबाद। मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था, वो इलाहाबाद में था। क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा। और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है,
0: एक मतलब कोई जानबूझ के प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था। हाँ। तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है,
1: हाँ,
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी,
1: इलाहाबाद में। तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ।
1: और
0: तब
1: फिर
0: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में?
1: नहीं नहीं नहीं वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए, तब वो आए थे मुंबई।
0: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी

0: कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
1: उग्र
0: था उस
1: रूप में।
0: वक्त।
1: हाँ जी
0: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
1: जी क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही होगी, आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने।
0: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
1: जी
0: थी,
1: जी
0: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
1: जी
0: कविता
1: जी
0: लिखी
1: बिल्कुल।
0: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
1: बहुत खूब।
0: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
1: जी जी
0: ये यही
1: जी
0: कविता है जो उन्होंने
1: लिखी
0: उसी वक्त लिखी,
1: उसी दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
0: अंकुर
1: और
0: पैदा
1: वहां
0: हुआ।
1: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
0: हाँ
1: जी तो मितुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं, आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
0: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, आज
1: जी
0: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
1: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: Durango, Durango, Durango, Durango.
1: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज़ हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि इस कवि को पकड़ो, इसको
0: बिल्कुल
1: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान, माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत कर दिया।
1: भूमिगत, भूमिगत। तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे वो वहाँ पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे।
0: जी
1: उन्होंने कहा कि आप लोग ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहाँ के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहाँ से। नहीं नहीं देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है। तो वो बात सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों
0: क्योंकि
1: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल, और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता है।
1: और दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, तो लोग समझते हैं
0: और
1: समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात
1: सही
0: ये
1: बात
0: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा, गांधी जी उनके हीरो थे। तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लिखा, तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा है,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, अब जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज़ जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है इस गाने के सिवाय वो
0: कोई
1: पूरी नहीं
0: गाना
1: होती।
0: जी बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है

0: कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज़्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
1: जी,
0: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
1: यही गीत
0: साबरमती के संत।
1: साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूँ। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू, बड़नगर में उनकी पैदाइश, बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहाँ के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहाँ जाते रहते थे, वहाँ खेत खलिहान थे। तो वहाँ पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं, भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे, उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है? तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए। फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया
0: जी।
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल। वो दर्शन
1: एक छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत हाँ, क्या हो गई भगवान, हाँ, कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूँ कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ,
0: दर्पण में
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं, और आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, हाँ, और आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद करते हैं। क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए।
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था, शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे। तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे,
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रभाव होता था, जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
0: अच्छा
1: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं, और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब लोग, तुम क्यों रो रही हो? मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे वो कराती।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा
1: जी।
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं,
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है और अपने मन को हम समझा लेते हैं कि अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे हाँ। भाई तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों ये सब में कुछ लिखा है तो।
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज का हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त नरेंद्र दुबे। कीजिए स्वीकार आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम सभी का प्यार भरा नमस्कार और उठाइए अपने मोबाइल को, फ़ोन को और तुरंत कॉल कीजिए 232593 पर। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का, क्योंकि आज आपसे बतियाएंगे कुछ हमारे 90 सालों के सफ़र के बारे में और साथ ही साथ तम्बाकू निषेध से जुड़ी कुछ बातों की भी जानकारी हम आपसे लेंगे और कुछ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाएँगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से कॉल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। हेलो आकाशवाणी, हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: आपकी आवाज बहुत धीमी मिल रही है।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: मैं ग्राम बड़ागांव जिला गोना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ सर।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी जी सर जी, पहली बार बात हो रही है।
0: हाँ, पहली बार बात हो रही है मांगीलाल जी आपसे।
1: जी जी सर जी, बहुत बहुत दिनों से कार्यक्रम सुनता हूँ, कॉल भी मिलाता हूँ, लगता नहीं है फोन।
0: अच्छा, आज तो आपका कॉल लग गया है।
1: जी सर, पहला कॉल मेरा ही है।
0: तो कौन सा गाना सुनेंगे
1: आज? मुझे दिल फिल्म का सुनवा देना, वो प्रिया प्रिया क्यों बुला दिया।
0: बेवफा या बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम।
1: नारायण अनुराधा पटवाल की आवाज में
0: जी बिल्कुल। इस फिल्म के गाने बहुत सुपर हिट रहे थे और आज भी लोगों की जुबा पर हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे कार्यक्रम हैं वो कैसे लगते हैं आपको?
1: मुझे अच्छे लगते हैं और सभी आकाशवाणी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, काफी समय से जुड़ रहा हूँ।
0: अच्छा
1: जी सर जी, और पहली बार मौका मिला इस कार्यक्रम में झालावाड़ में कॉल लगाने का। पहली बार कॉल लगी है।
0: तो हमारे जो आकाशवाणी का सफर है वो 90 वर्षों का हो चुका है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: जी जी, रेडियो ने बहुत कुछ दिया है हमको और 90 साल की शुभकामनाएं है सभी को।
0: जी,
1: आकाशवाणी की पूरी टीम को 90 साल की शुभकामनाएं है हमारी तरफ से।
0: जी जी धन्यवाद। चलिए आपकी फरमाइश
1: है सर जी, दो नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी जी,
1: प्रेम सिंह ससोदिया जी हैं, वीरन धाकड़ हैं, नरेश प्रजापति हैं, अमर सिंह भील हैं।
0: तो आपने अपने मित्रों के नाम तो हमें बता दिए हैं, इन मित्रों से भी कहिए कि हमारे चैनल को जो है सुने, और जो हमारे प्रचार प्रसार के हमारे संसाधन है फेसबुक पर भी हमारी पोस्टें आती हैं कार्यक्रमों से जुड़ी हुई, तो उन सभी को आप सभी सब्सक्राइब करें और हमारे सभी कार्यक्रमों की सजीव जानकारी प्राप्त करते हुए सभी कार्यक्रमों को सुने। फिलहाल आप सुनिए आपके पसंद का दिल फिल्म का ये नगमा। धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी। हेलो,
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल
0: हेलो
1: रहा हूँ।
0: आकाशवाणी।
1: हेलो जी सर, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: जी। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: प्रेम जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी। थैंक यू सो मच। नरेंद्र जी कैसे हैं आप?

0: मैं बहुत बढ़िया हूँ प्रेम जी, आप बताइए आप कैसे हैं।
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम बड़ा सुहाना है हमारे यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सुबह बारिश भी हुई थी। जी
0: यहाँ
1: हाँ
0: झालावाड़ प्रॉपर में तो कल रात्रि को काफ़ी तेज़ अंधड़ या यूँ कहें तूफान आया हुआ था, काफ़ी तेज़ हवाएं
1: जी
0: थी
1: सर जी,
0: और
1: बताए
0: का
1: नरेंद्र जी, रात में तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा माहौल हो चुका था। 11:30 बजे काफी तेज हवाएं चली और लाइट चली गई, तो सुबह 6 बजे लाइट आई।
0: जी
1: पूरी
0: बिल्कुल।
1: रात मतलब यहाँ से वहां तक दौड़ते रहे बिस्तर लेके, और मच्छरों ने काफी प्रकोप मतलब दिखाया रात में हमें।
0: पुराने
1: जी
0: जमाने की याद ताजा करा दी मतलब।
1: हाँ जी, कभी कोई छत पे जा रहा है तो कोई बाहर निकल रहा है, तो कोई कहाँ खाट डाल रहा है, मतलब
0: हाँ
1: पूरे गांव में हलचल रही पूरी रात।
0: हमारे बचपन में भी हमने ये पल देखे हैं जब हम छत पर सोते रहते थे, अचानक बारिश आ जाती थी तो बिस्तर लेकर के नीचे भाग करके आना और गर्मी के मारे वापस थोड़ी देर बाद
1: बड़ा
0: बारिश रुकते ही वापस बाहर जाना।
1: अच्छा मतलब गई पिछली जो रात गई ना हमारी, बड़ी अच्छी मतलब पूरी फैमिली ने साथ में गुजारा, सब बच्चे भी जाग गए, हम सब जाग गए, मतलब ऐसा पूरा गांव मतलब ऐसा रहा कि सभी लोग एक दूसरे से बातें भी करने लगे, एक दूसरे के छत पे खड़े रह के, और लाइट का इंतजार किया किसी ने, जब लाइट नहीं आई ना सब अपने अपने बिस्तर लेके सो गए फिर।
0: अच्छा लेकिन अपने यहाँ की एक और विशेषता होती है कि अगर हमारे यहाँ लाइट चल गई है किसी कारण से या लाइट नहीं आ रही है तो पहले आदमी अपना फ्यूज नहीं देखता है, पहले ये देखता है कि पड़ोस के आ रही है या नहीं, देख क्या।
1: जी बिल्कुल सही कहा धन्य जी, रात में ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। मेरी बड़ी वाली लड़की है बिंदिया, वो बोल रहे पापा अपने घर पे लाइट नहीं है तो आप मतलब पास वाले घर में देखिए कहीं वही चल रही है या अपने घर पे कहीं खराब तो नहीं हुई। उन्होंने पहले जाके मतलब पड़ोस वाले के घर में देखा, फिर अपने घर में चेक करते हैं।
0: सही बात है।
1: जी
0: लेकिन फिलहाल जो भीषण गर्मी थी उससे कुछ राहत और सुकून हम सभी को महसूस हो रहा है इससे। अच्छा ये बताइए कि जो आज का दिन है विशेष रूप से तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सभी
1: जी
0: जगह, आपका कुछ कहना है इस बारे में।
1: जी बिल्कुल बताऊंगा नरेंद्र जी, मैं तो किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता हूँ, तंबाकू बीड़ी शराब खैनी ऐसे कुछ भी मतलब नहीं खाता हूँ, और हमारे परिवार में कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत सारे खाते हैं, विमल खाते हैं, ऐसे मतलब प्रोडक्ट आते हैं ना, उनको
0: जी
1: बार बार मतलब उनको लत लग चुकी है तो वो छोड़ भी नहीं सकते। अगर कुछ लोग छोड़ने की कोशिश भी करते हैं ना, तो जैसे कि उनको थोड़ी सी कोई परेशानी हो जाती है, इस वजह से मतलब काफी लोग नशा करते हैं।
0: जी
1: लेकिन एक बार जब नशा हो जाता है ना, तो इसकी लत लग जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि मतलब जितना जल्दी हो सके इस नशे से छुड़े, नशे को छोड़े और मतलब सही राह पे आए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। नशा जो है विनाश की जड़ है और वो न केवल हमें शारीरिक रूप से खोखला करता है बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरे परिवार को और हम सभी को जो है कमज़ोर बना देता है। तो नशा जो है किसी भी चीज़ का हो वैसे तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। आपकी पसंद का नगमा।
1: जी सर, फिल्म का नाम है राज और गाने के बोले इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को न चाहे।
0: चलिए आपने हमें फ़ोन किया, आपकी पसंद पर हम आपको सुना रहे हैं राज फिल्म का ये नगमा। फ़ोन करने के लिए
1: जी
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। और एक बात बताऊँ, जैसे अभी मांगीलाल जी का कॉल आया था ना, तो वो कह रहे थे कि मेरा कॉल लग ही नहीं रहा है यार, आकाशवाणी झालावाड़ पे मैं कैसे लगाऊं, वो मेरा कॉल रिसीव नहीं होता है। तो मैंने उनको बताया कि आप कॉल बार बार लगाते रहो, एक बार जरूर कॉल रिसीव होगा, और देखिए आज उनका पहला कॉल ही था।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके मित्र हैं
1: जी
0: शायद वो।
1: हाँ जी, हमारे मित्र फोन कॉल्स द्वारा हमारी बात होती रहती है।
0: क्या बात है, आज
1: जी
0: दोनों दोस्तों का जो है फ़ोन कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में लग चुका है। चलिए आपकी फरमाइश को हम पूरा कर रहे हैं, फ़ोन करने के लिए धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्ते।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, मतलब ज्यादा वैसे नहीं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए फिर
0: क्या बात है,
1: एकदम से नहीं
0: तबीयत
1: हो सकती
0: आपकी कैसे
1: एकदम।
0: डाउन हो गई?
1: अरे बस मेरा बीपी लो हो गया आज, इसलिए बाकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुबह ज्यादा हालत डाउन थी, अभी तो ठीक है, बेटर है। और आपके क्या हाल चाल?
0: बहुत बढ़िया है। हमारे तो फिलहाल हमारा बीपी नॉर्मल चल रहा है, ना बढ़ा हुआ है ना घटा
1: नहीं,
0: हुआ है।
1: मेरा भी 115 ही था, ऐसा नहीं है। मैंने अब जस्ट अभी चेक किया था घर पे, हाँ, तो 115 था। पर प्रॉब्लम ये है कि किसी किसी को 115 में नॉर्मल रहता, बट मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। 115 नहीं होना है मेरा, 120 ही होना,
0: अच्छा
1: ऐसा
0: ऐसा
1: रहता है। हाँ,
0: कई बार
1: छोटे मोटे
0: हमारी
1: डॉक्टर तो
0: मानसिकता का भी बहुत फर्क पड़ता है।
1: नहीं, मानसिकता नहीं है, जैसे कि ऐसा नहीं है मेरे घर में, जैसे कि बीपी वगैरह चेक करने की मशीन है, थर्मामीटर भी है। जैसे बुखार वगैरह चेक करते हैं ना,
0: जी
1: तो थोड़ा बहुत तो ना रखते हैं घर पे, क्योंकि बहुत जरूरी है, वक्त बे वक्त जरूरत पड़ जाती है। जब से कोरोना आया ना, जब से ना छोटे मोटे डॉक्टर तो बन ही गए हैं।
0: हाँ, कोरोना के बाद से तो लगभग सभी लोग डॉक्टर बन चुके हैं। और जब
1: उसके बाद ही बीपी की मशीन मेरे घर में आई है, वो जो थर्मामीटर, वो भी मतलब जो है ना बुखार चेक करने का, वो भी मतलब रखते ही है ना परमानेंट।
0: हाँ, लेकिन उसके बाद हम भी रेडियो पर हमारे श्रोताओं को सुन सुन के इतने डॉक्टर बन गए हैं कि हम अभी आपको बता सकते हैं।

0: कि अगर अगर आप अभी नापेंगी तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा।
1: चलो मैं अभी चेक करती हूँ, पहले आपसे बात कर लूँ उसके
0: हाँ,
1: बाद।
0: क्योंकि जो हमारा चैनल है आकाशवाणी का झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल, इससे जो भी हमारे श्रोता जुड़ते हैं तो वो निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं और बिल्कुल उनका बीपी वगैरह जो भी कुछ भी गड़बड़ है कुछ पलों के लिए ही
1: हाँ
0: सही, सब
1: मुझे
0: कुछ
1: तो सच
0: नॉर्मल हो जाता
1: बात
0: है।
1: तो मुझे तो फोन लगाने में ज्यादा मजा आता है। गाने तो क्या सुनती रहती हूँ मैं, फोन
0: हाँ
1: लगाने को मैं कंपटीशन समझती हूँ, बस लगाती हूँ। और
0: हाँ
1: मतलब वैसे तो मैं दो फोन से लगाती हूँ, लेकिन आज ना एक फोन से लगा रही थी बस।
0: अच्छा, और फिर भी लग गया
1: हाँ लग जाता है, मैं ना
0: मतलब।
1: रिडायल पे छोड़ देती हूँ मेरा फोन, मतलब बार बार नहीं लगाती हूँ,
0: हाँ,
1: जैसे लाइन कनेक्ट होती है तो बस मतलब हो जाती है कनेक्ट, लगता रहता
0: अच्छा
1: है मेरा।
0: कंटिन्यू रिडायल होता है उससे
1: हाँ
0: आज तो
1: ऐप
0: आप।
1: डाउनलोड कर रखा है मैंने, फिर बार बार तो देखो इतना नहीं कर सकते ना, क्योंकि घर में या कुछ शॉप में भी रहना तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई सोचेंगे पागल हो गई है बार बार फोन लगा रही है, इसलिए तो मैं रिडायल पे छोड़ देती हूँ।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने आज के आपके जो राज है इसको जान
1: हाँ
0: लिया है, अब वो भी ऐसे ही करेंगे तो हो सकता है आने वाले
1: बस
0: टाइम में आपके कॉम्पिटिटर बढ़ जाएं। अरे
1: सर आपको एक बात बता दूं, प्रोग्राम तो बहुत सारी जगह आती है, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर है और भी बहुत सारी जगह आते हैं, लेकिन लखनऊ भी आता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आकाशवाणी भोपाल और आपका झालावाड़ और नॉर्थ ईस्ट का शिलोंग है, बस यही चैनल सुनती हूँ, बाकी मैं मतलब ऐसा नहीं हर कहीं भी कॉल, मुझे पता है हर जगह फोन इन प्रोग्राम आते, लेकिन मैं नहीं करती, बस
0: अच्छा
1: मुझे इन चैनलों से लगाव है इसलिए लगाती हूँ कॉल।
0: चलिए, धन्यवाद आपका कि आपने हमारे जो झालावाड़ है रेडियो स्टेशन इसको पसंद किया और लगातार आप इसकी नियमित श्रोता हैं। कौन कौन से
1: जी
0: कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ मैं तो यही सुनती हूँ ज्यादातर,
0: अच्छा, ज़्यादातर यही
1: और
0: सुनती हैं।
1: हाँ पहले वो रात के वक्त आता था, जब से लगा रही हूँ फोन।
0: अच्छा ये बताइए कि जैसे आप कह रही हैं कि दुकान भी देखती हैं, सब कुछ दिखती हैं, तो अपने आसपास आपने देखा होगा कि कई लोग जो है तंबाकू का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या सलाह देंगी?
1: देखिए सलाह तो आजकल मेरे हिसाब से किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग बाग मानते तो है नहीं है, ऊपर से बुरा और मान जाते हैं, तो मैं तो मतलब सलाह उसी को देना चाहिए जो अपनी बात सुनता हो या सुनती हो ऐसा।
0: हाँ, लेकिन फिर भी कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है
1: हम
0: और कई
1: मानते हैं,
0: बार।
1: आप सुनिए अब आपने तंबाकू की बात बोली, अब मैं आपको बता दें, हम शादियों में जाते हैं, खाना खाते हैं, कई लोग इतना ले लेते हैं थाली में, फिर वो बेस्ट होता है, वो फिकता है ना, अगर हम किसी को, मैंने एक बार बोल के देख भी लिया है, पर लोगों को कोई और आपको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर अपन से दूर हट जाते हैं, मतलब हर चीज में मतलब यही आंसर मिले ना।
0: नहीं
1: अभी मैं
0: नहीं
1: आपसे बोल दूं, नहीं मैं झूठ बोल दूं कि नहीं सर मैं तो ऐसा बोलती हूँ, मैं तो ऐसा बोलती हूँ, पर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, प्रॉब्लम ये है।
0: लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए। देखिए कई
1: कोशिश
0: बार,
1: करते हैं, कोशिश
0: हाँ
1: जितना आपके लिए पॉसिबल लगे उतना
0: उससे
1: करो,
0: हमें
1: हम लोग
0: हतोत्साह।
1: दूर रहते हैं, हमारी फैमिली में हम सब लोग, जैसे मेरे भाई हैं, मेरे हस्बैंड है ना, हम सब लोग दूर रहते हैं ऐसी चीजों से, इतना है
0: चलिए बहुत
1: मतलब
0: अच्छी
1: बात।
0: बात है। आपकी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहें कार्यक्रम में।
1: जी तो हाँ
0: हेलो,
1: मूवी का नाम है पार्टनर और गाने के बोल है यू आर माई लव, तो प्ले कर दीजिए मेरा सॉन्ग। जी
0: अच्छा,
1: आज मैंने
0: दिस
1: सोचा
0: कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड,
1: मैं
0: दिस
1: आज
0: कॉल इज नाउ
1: आज
0: बीइंग
1: मैंने ये
0: रिकॉर्डेड।
1: सोचा कि मेरी हालत डाउन है तो थोड़ा सा ना डांसिंग सॉन्ग सुनना चाहिए, तो थोड़ा सा सही हो जाऊंगी।
0: बिल्कुल सही है, लो बीपी को हाई करने का ये बहुत अच्छा उपाय है। गाना चला करके डांस करने लग जाओ, अपने आप
1: जी
0: 5-10 का जो वेरिएशन है वो तो ठीक हो ही जाएगा। और आपके
1: जी
0: पार्टनर को भी साथ रखिए, आप उनके साथ आनंद लीजिए
1: ओके
0: इस गीत का। फोन करने के लिए
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो, नमस्कार जी। जी,
0: नमस्कार।
1: मैं जालिम सिंह, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से।
0: जालिम सिंह जी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हमें फ़ोन लगा रहे हैं और आपका फ़ोन हमारे फ़ोन पर लग चुका है।
1: जी, उसके
0: हाँ, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी
0: ये बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए आपको।
1: गाना सुनेंगे बेबा सनम से।
0: हाँ।
1: तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं,
0: मौत ने हमको मारा है लेकिन जिंदगी के
1: जिंदगी
0: सताए
1: के
0: हुए
1: सताए
0: हैं।
1: हुए।
0: हाँ, एक समय ये एल्बम बहुत प्रसिद्ध हुआ था और लोगों की जबां पर चढ़ करके इसके गाने बहुत बोल रहे थे। बाद में ये
1: बहुत
0: पिक्चराइजेशन किया गया इन गानों को। क्या करते हैं जालिम सिंह जी।
1: जी, मैं पेस्टिसाइड की दुकानें चलाता हूँ और हिंदुस्तान अखबार आता है, हिंदी में उसमें पत्रकार हूँ छोटा सा।
0: अच्छा, पत्रकारिता भी करते हैं और पेस्टिसाइड की दुकान भी चलाते हैं, दोनों काम करते हैं।
1: जी,
0: जालिम सिंह जी, आज तंबाकू निषेध दिवस है। हेलो, लगता है जालिम सिंह जी का फ़ोन हमारे से डिसकनेक्ट हो गया है, लेकिन इन्होंने अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दी है। तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमेल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: पूरन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका कि नाम है हेलो आकाशवाणी।
1: थैंक यू सर। सर
0: क्या करते हैं?
1: हम खेती बाड़ी करते हैं और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। न्यूज आईआर के माध्यम से मेरे गोल्डी भैया जी है वो उनके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ आपका कार्यक्रम।
0: तो कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको?
1: कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। हेलो आकाशवाणी हो गया, खेती बाड़ी से हो गया, जो डॉक्टर की बात आती है वो हो गया, बहुत अच्छे कार्यक्रम
0: सभी
1: लगते हैं सर।
0: कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी सर।
0: हमारे आकाशवाणी का सफ़र जो है वो 90 सालों का हो चुका है, तो कैसा लगता है आपको? पूर्व में सुनते थे, आज सुनते हैं, कोई परिवर्तन?
1: जी परिवर्तन ये है कि आकाशवाणी जो शुरू शुरू में तो आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से आया करता था और जब हम एक जगह पे जैसे अपन एक जगह पे रहते तो 30-40 किलोमीटर तक पकड़ता था और आज हमारा देश में ऐसी तरक्की कर ली तकनीक के माध्यम से। आकाशवाणी चाहे किसी भी कोने में जाओ तो न्यूज AIR ऐप के माध्यम से और जहाँ अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आकाशवाणी केंद्र सुनाई देता है, कोई सी भी जगह जाओ सर।
0: ये बिल्कुल सही बात कही है आपने कि तकनीक का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि जो पहले हमारी रेंज होती थी वो बहुत कम होती थी, लेकिन आज किसी भी स्टेशन को आकाशवाणी के कहीं भी पूरे संसार में कहीं भी मौजूद हो आदमी सुन सकता है उसको।
1: जी अपने राज्य की याद है, अगर हम अपन बाहर भी जाएंगे ना तो अपने राज्य की, जैसे भाई आप पहले आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुनते थे तो अपने राज्य की याद अपन को नहीं सताएगी आप न्यूज AIR के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी लोग बाग जो है नशा करते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, और इसके कई दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं।

0: हैं और कई गंभीर बीमारियों से भी रोग से जो है लोग पीड़ित हो जाते हैं। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को जो सुनने वाले हैं इस रेडियो के माध्यम से?
1: रेडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि सर जो इसे उन पे बताया भी जाता है और लिखा भी आता है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि अपने जो गुणकर्ता चीज है ना उनका
0: हाँ
1: इस्तेमाल कीजिए, जो नुकसानदेह चीज है ना उनको अवॉइड करना चाहिए सर, ये कहना
0: बिल्कुल सही
1: चाहूंगा।
0: कहा आपने, जो गुणकर्ता चीज़ें हैं उनका उपयोग करें और नुकसानदायक चीज़ों का अवॉइड करें, क्योंकि ये शरीर को हानि पहुंचाती है और हम सभी को इनसे बचना चाहिए। आपकी पसंद का कोई नगमा जो आज के इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं?
1: जी सर, फिल्म का नाम है नाजायज और गाने के बोल है ना लव टॉप, ये गाना सुनना चाहता हूँ सर।
0: चलिए, आपने हमें फ़ोन किया, आपकी फरमाइश पर पहुंच रहा है ये गाना।
1: थैंक यू सर।
0: धन्यवाद।

0: बोले ला लैपटॉप पे ये गाना सुनना चाहता हूँ सर।
1: चलिए, आपने हमें फोन किया, आपकी फरमाइश पर पहुंच रहा है ये गाना।
0: थैंक यू सर।
1: धन्यवाद।

0: जिसका नाम है।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो,
1: हाँ नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर जी, नमस्कार। बार कॉल आपसे बात हो रही है सर
1: आपका प्यारा सा नाम तो बताइए।
2: जी। राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोहड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सतीश बरेली, पुराना गांव ठगिया सर से बोल रहे हैं सर जी।
1: राजेंद्र जी बहुत अच्छी बात है, आपका फोन हमारे कार्यक्रम में लग चुका है। क्या करते हैं राजेंद्र जी? जी
2: सर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जो हमारी कॉल रिसीव की, क्योंकि आज हम पहली बार आकाशवाणी जहानाबाद में जुड़े हैं सर जी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है कि पहली बार आपने कोशिश किया और आज हमारे कार्यक्रम में आपका फोन लग गया है।
2: सर जी, कोशिश तो हम कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कहीं के एंड में कॉल लगती है, कहीं शुरू में, लेकिन बात ही नहीं हो पाती है। कभी सर जी बोलते आज तो टाइम पूरा हो गया, तो अब बात हो पा रही है, तो सबके लिए पूरी आकाशवाणी टीम को हमारी कॉल को सहायता करने के लिए, करेंगे भी इसके लिए, धन्यवाद सर जी।
1: आपकी बात पर एक लाइन मुझे बहुत मशहूर कविता है उसकी याद आ रही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती।

0: तो आपने कोशिश की तो सफलता मिली है। हमारे जो श्रोता जिनका फ़ोन हमारे कार्यक्रमों में नहीं लगा है, उनको भी पता चल गया होगा कि यदि वो लगातार प्रयास करते हैं तो उनका फ़ोन हमारे कार्यक्रम में ज़रूर लगेगा और हम उनकी फरमाइश को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे।
1: तो बात सर जी ठीक है। और मौसम कैसा है उधर का सर जी?
0: मौसम यहाँ का ठीक है, आंधी तूफान आया था थोड़ा, उसके कारण जो है वातावरण में वापस ठंडक है, लेकिन फिलहाल दिन में सूर्यदेव वापस अपने जो है गर्मी उसमें वृद्धि करने में लगे हुए हैं।
1: अच्छा जी,
0: हाँ अभी तो
1: यहाँ
0: सब
1: भी ऐसा ही चल रहा है, लुपा छुपी मौसम चल रहा है, कहीं बारिश तो कहीं आंधी पानी आ रहा है, कभी ठंडा कभी थोड़ा। फिलहाल मौसम अभी ठीक है फिलहाल।
0: हाँ, पूरे देश में इसी तरह का माहौल चल रहा है। लगभग लगभग कई राज्यों में जो है अंधड़ के साथ हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा हुई है।
1: अच्छा जी, हाँ ठीक है, ऐसा ही होना भी चाहिए क्योंकि गर्मी तो अपनी सीमा चरम पर चल रही थी, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी, घर से निकलने परेशान हो गया था, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे।
0: हाँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नौ तपा जो है यदि वो गल जाता है तो फिर वर्षा की संभावना कम हो जाती है। यद्यपि आजकल जो है मौसम जितना हमारे वैज्ञानिक सटीक आकलन करने लगे हैं, उतना ही मौसम भी जो है उनके साथ खेल करने लगा है।
1: हाँ जी,
0: तो
1: खेल
0: प्रकृति
1: क्या करने लगा है, उन्होंने भविष्यवाणी की कि नौतपा बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ेगी, लेकिन क्या भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी है इंसान की, कोई कुदरत की खेल नहीं देख पाया है। और बारिश तो नौतपा में अब हुई है, तो अच्छा हुआ कि मौसम ठंडा हो गया थोड़ा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, कुदरत के खेल को कोई नहीं समझ सकता। ईश्वर कहता है कि अच्छा इंसान तू डाल डाल तो मैं पात पात,
1: हाँ जी
0: तो उससे तो कोई नहीं जीत सकता। आज तंबाकू निषेध दिवस है।
1: हाँ जी, इसको भी पूरी आकाशवाणी टीम को और सभी श्रोताओं को तम्बाकू दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अगर कोई नशा पान कोई करता है, चाहे तम्बाकू हो चाहे शराब हो, किसी का भी हो, फिलहाल नशा नहीं करना चाहिए और छोड़ना चाहिए, क्योंकि नशा एक जड़ की नाश होती है, जो नशा होता है सर जी।
0: नशा नाश का मूल है।
1: हाँ जी, और पहली बात तो आज तम्बाकू दिवस है, क्योंकि तम्बाकू में तो एक ऐसा निकोटीन जहर पाया जाता है जो धीरे धीरे वो कैंसर के रूप में विकार रूप ले लेता है सर जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसीलिए आज का ये दिन मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके कि तंबाकू को छोड़ें, अपने जीवन को सुखी बनाएं और गंभीर कई रोग होते हैं कैंसर जैसे कई गंभीर रोगों से बचें। कई बार हम देखते हैं कि किसी का मुंह नहीं खुल रहा है पूरी तरह से, किसी के जो है छाला हो गया है वो धीरे धीरे विकराल रूप ले लेता है। तो हम तो चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें फ़ोन लगा करके सभी बात करें, हमारे श्रोताओं को सभी को खुश रखें ईश्वर। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई शोक कर रहा है तंबाकू जैसी चीज़ का, तो उसका तुरंत आज से और अभी से प्रण लेकर के त्याग करें।
1: हाँ जी, वैसे तो इंसान से बढ़ के कोई काम नहीं होता है, अगर इंसान ठान ले मन में तो उस काम वो जिससे पकड़ ले वो सफल भी हो सकता है, अगर चाहे तो तम्बाकू ढील भी सकते हैं, तम्बाकू कोई बड़ी चीज नहीं है सर जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना पसंद आएगा आज के इस कार्यक्रम में?
1: हाँ जी, मूवी का तो नाम हल्का हल्का ध्यान नहीं है फिलहाल, गाने के बोल हैं शीशे की उम्र प्याल की
0: प्रेम
1: आखिर मिसाल के। हाँ
0: प्रेम
1: जी,
0: प्रतिज्ञा
1: प्रेम
0: फिल्म का ये
1: प्रतिज्ञा।
0: गीत है,
1: हाँ
0: गुनगुना
1: जी,
0: के
1: तो
0: कुछ
1: कुछ,
0: बताएंगे?
1: हाँ जी, गुनगुनाते हो तो हम बहुत कम है सर जी, गुनगुनाना तो कम ही आता है।
0: अच्छा
1: हाँ जी, कुछ
0: चल
1: दोस्तों के नाम ले सकते हैं?
0: जी, आपके दोस्तों के नाम लीजिए आप।
1: हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे भगवान सिंह परमार जी हैं, शाहरुख नूर अंसारी जी हैं, गंगाधर सावंकर जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, गौतम राय जी हैं और सोनू जी हैं, और जितने लाइव श्रोता सुनेंगे सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा और साथ में आपको भी।
0: धन्यवाद फ़ोन करने के लिए, आपकी पसंद का नगमा पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट तक।
1: नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: तोमर साहब कैसे हैं?
1: आपकी दुआ युति कृपा से बहुत अच्छी तरह से। सर जी
0: आपका फोन हमारे कार्यक्रम में लगा है, तो सबसे पहले तो हम आपकी फरमाइश के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
1: सर जी फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती, मुकेश की आवाज में गीत है। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है?
0: बहुत मधुर और बहुत अच्छे बोलों से सजा हुआ यह गीत आपने चुना है आज के इस कार्यक्रम के लिए, जो हमारी प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन करता है और ये भी बताता है कि हमें देखभाल करनी चाहिए हमारी इस धरती माता की, क्योंकि ये जो चित्रकार है ईश्वर, उसने इतनी खूबसूरत जो है संरचना की है और हम सभी को सौंपी है, तो इसको ध्यान रखने का जो है, इसकी सुरक्षा का, इसके संरक्षण का दायित्व भी हम सभी का बनता है।
1: जी सर जी।
0: और इसी के साथ ऊपर वाले ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये तन हमें दिया है, तो इसकी सुरक्षा भी हमारे लिए लाजमी है कि हम ध्यान रखें इसका। लेकिन अक्सर देखते हैं कि लोग बाग जो है तंबाकू खा खा करके अपने मुंह की हालत ख़राब कर लेते हैं और साथ ही साथ आसपास का जो वातावरण होता है उसको भी दूषित करते हैं। गंदगी जगह जगह देखने को मिलती है, हर कहीं थूक दिया, हर कहीं फर्श पर जो है दाग पड़ जाते हैं। तो
1: जी सर जी, तो आज है तंबाकू निषेध दिवस है, तो इस दिवस को मनाने का मकसद भी यही कि हम जागरूकता फैलाएं और लोग जागरूक भी हुए। कई लोगों ने छोड़ दिए बीड़ी सिगरेट तंबाकू सबको, जो गुटखा खाने लगे, गुटखा भी नुकसानदायक है।
0: अरे गुटखा तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है तो, क्योंकि वो बहुत सहज सुलभ मौजूद है, हर कहीं से लिया और उसको फाड़ा और कचरा फैला करके हम चल देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन सभी चीज़ों से दूर रहें, नशे से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं और उसमें तंबाकू से जुड़े उत्पाद जितने भी हैं, हम उनका आज से ही इस दिवस से जो है अपने जीवन में प्रवेश निषेध करें। आपकी फरमाइश हमें मिल चुकी है।

0: हम पूरा कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं फिल्म बूंद जो बन गई मोती का ये गीत, जिसको स्वर दिया है मुकेश जी ने। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत नमस्कार।

और दोस्तों अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो आज का हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त नरेंद्र दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे 6:05 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे फिल्मी नगमे।

किसान भाई बहनों का कार्यक्रम कृषक चौपाल होगा शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु हरी खाद एक विकल्प। पुष्पदयाल नागर, सहायक कृषि अधिकारी झालावाड़ से अशोक कुमार शर्मा की ये बातचीत आप कार्यक्रम के दौरान सुन सकेंगे। और ग्रीष्म ऋतु में लू से बचाव कैसे करें, ये जानकारी भी आपको दी जाएगी। कार्यक्रम रहेगा कृषक चौपाल और समय रहेगा शाम 7 बजे।

और अब से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम 6 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, रिले होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी झालावाड़ है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसे हम दिल्ली से रिले कर रहे हैं। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति दी है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ फिल्म शर्मिली से।

0: लपक झपक तू वार बदरवा बरस बरस तू कार बदरवा लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू
1: आ दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना।

Para todos.

फिल्म संगीत आप आकाशवाणी झालावाड़ से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए मनाडेव और साथियों को फिल्म बुढ़ा मिल गया में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के झोंके।
1: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहां तक रोके?
0: मम्मा, सर दर्द।
2: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत बच्चों को छांव में लाएं, कपड़ों को ढीला करें, पंखे की हवा तेज करें, बच्चे को ठंडा पानी पिलाएं और उल्टी करवट लेटाएं। कोई गंभीर लक्षण दिखे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं।
3: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म कारवां केस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी झालावाड़ है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठियों और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इसे हम जयपुर अजमेर केंद्र से

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी
1: हाँ
5: आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
9: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
12: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
11: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
12: कहाँ से पता चलेगा।
11: उद्गम से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
12: आज ही सर्च करूंगा।
11: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के प्रयासों को पहचानें और उनकी सराहना करें जो कुछ नया कर सबको प्रेरणा देते हैं। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़ने का आग्रह किया।
1: साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए।
0: मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करने को कहा। स्वदेशी पेय पदार्थों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने इन्हें अपनाने की अपील की।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही की अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार द्वारा चोल काल की प्राचीनतम पट्टिकाओं को भारत को सौंपने पर इसे गर्व का क्षण बताया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं के उत्साह का जिक्र करते हुए देश के युवा साथियों से इस विधा में पारंगत होने की अपील की। गर्मियों की छुट्टियों में एस्ट्रोनॉमी से जुड़े विषय पर क्लब बनाकर नया सीखने का सुझाव दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा करते हुए देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों, राष्ट्रीय और सामाजिक गतिविधियों तथा गांव कस्बों की बातों के साथ गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए प्रेरणादायी कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रांची में संपन्न राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के रिकॉर्डधारी विजेताओं को बधाई देते हुए इसे देश के खेल भविष्य के लिए उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर राज्य भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर युवाओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए वे सामाजिक सरोकार के कार्यों से जुड़ें तथा नवाचार अपनाकर अपने कौशल में बढ़ोतरी करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विचार युवाओं को सकारात्मक परिवर्तन और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।
2: चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है।

0: उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं।
1: खेती में उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से करेंगे। अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

0: कृषि विज्ञान केंद्रों, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद कर जन भागीदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी रिडको की भूमि आवंटन और भूमि मूल्य निर्धारण नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। रिडको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश ओला ने बताया कि प्रस्तावित नीति में सामान्यतः भूखंडों का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया जाएगा। वहीं फ्लैटेड फैक्ट्री, प्लग एंड प्ले, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे विशेष क्षेत्रों के लिए 33 से 66 वर्ष तक की लीज का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा नई नीति में फ्लैटेड फैक्ट्री, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित आवासीय तथा सामाजिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सुविधाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। प्रस्तावित नीति में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में रिडको द्वारा विकसित औद्योगिक टाउनशिप में अब भूखंड आवंटन, प्रबंधन तथा निस्तारण हो सकेगा। NICDC द्वारा जारी मॉडल फ्रेमवर्क पर आधारित ये नीति राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री टिफनी ट्रंप आज स्वर्ण नगरी जैसलमेर की यात्रा पर रहीं। वे अपने पति माइकल बोलोस के साथ विशेष विमान से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर उनका पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। टिफनी ट्रंप की जैसलमेर यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ विशेष सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहीं। टिफनी के जैसलमेर आगमन से इस पर्यटन नगरी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी प्रसिद्ध होने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। जिला मुख्यालयों पर साइकिल रैली निकालकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया गया। जालौर में निकाली गई रैली में बड़ी संख्याओं में युवाओं ने हिस्सा लिया। चूरू के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस मौके पर नाथो तालाब पर कार्यक्रम रख जल पूजन किया गया। सरहदी जिले जैसलमेर में अभियान के तहत भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शरबत और नींबू पानी पिलाया गया। बालोतरा के जसोल में प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता बढ़ाई गई। इसी तरह पाली के तखतगढ़ में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गंगा जल का पूजन कर आम जन को शपथ दिलाई। करौली के पांचना बांध पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आम जन ने वृक्षारोपण और जल पूजन किया। सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय से पहुंची टीम ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
1: सिरोही जिले में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान से चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमदान, जल शपथ, वंदे गंगा संकल्प कार्यों का अवलोकन एवं जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को PCD रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, MPT रिचार्ज शाफ्ट तथा CCT कार्यों का अवलोकन कराया गया। वहीं अभियान के तहत आज सुबह साइकिल रैली निकालकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: जोधपुर की बड़ली ग्राम पंचायत में संसदीय कार्य और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने जिलाधिकारियों के साथ बड़ली भैरूजी तालाब पर श्रमदान कर आम जन से सहभागिता निभाने का आह्वान किया। प्रदेश के कई भागों में बीते दो दिनों से बना हुआ आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। हालांकि कुछ जगहों पर आज भी धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में तेज हवाएं चलने और विभिन्न स्थानों पर बरसात के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने

0: बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर तथा डीडवाना, कुचामन के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वहीं जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चूरू, अजमेर और राजधानी जयपुर के लिए येलो अलर्ट बताया है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट के 19वें सीजन का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में दोनों टीमें चौथी बार एक दूसरे के सामने होंगी। पहले 3 मैचों में आरसीबी ने 2 में और गुजरात टाइटंस ने 1 में जीत हासिल की थी। दोनों ही टीमों ने लीग मुकाबलों में 9 जीत दर्ज की थी और समान अंक हासिल किए थे। गौरतलब है कि राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक का सफर तय किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अच्छे काम से जुड़ने और कुछ नया सीखने का आह्वान किया। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियों में किसानों को सलाह देने के लिए कल से देश भर में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित हुईं। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। झालावाड़ जिले के 3 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डेस्क से सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार, डीएसपी प्रेम कुमार और डीएसपी हर्षराज खरेड़ा को ये सम्मान दिया गया है। इन्हें विभिन्न अभियानों, जांच और कानून व्यवस्था में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। एसपी अमित कुमार को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दूसरी बार डीजीपी डेस्क मिली है। इससे पहले प्रतापगढ़ जिले में एसपी रहते हुए भी उन्हें ये सम्मान मिल चुका है। वहीं हर्षराज खरेड़ा को ऑपरेशन क्लीन राइड और प्रेम कुमार को ऑपरेशन शटर डाउन में प्रभावी रूप से काम करने के लिए सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर ने विभिन्न उपखंडों के राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि परिवादियों को त्वरित लाभ मिले। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जिले में कोई भी पुराना राजस्व मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण द्वारा एक ही दिन में 237 मामलों की सुनवाई कर 175 का निस्तारण किए जाने की भी सराहना की। झालावाड़ पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके तहत झालावाड़ में मामा भांजा चौराहे से गावड़ी तालाब और भवानी मंडी रोड तक के मार्ग को आदर्श ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस मार्ग पर यातायात नियमों की 100% पालना सुनिश्चित की जाएगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वाले और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले तथा ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा कैंपस प्लेसमेंट शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी अंकुर शर्मा ने बताया कि ये शिविर मिनी सचिवालय में लगाया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान फील्ड ऑफिसर, सेल्स प्रतिनिधि, मशीन ऑपरेटर और सुरक्षा गार्ड के पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार लिए गए। झालावाड़ में पिछले दिनों राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता रखी गई। इसमें उदयपुर के व्यांश भटनागर ने ओपन वर्ग का खिताब जीता। वहीं बालिका वर्ग में टीना ब्याडवाल चैंपियन बनी। जिला शतरंज संघ के सचिव महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि व्यांश ने सभी 6 मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया। झालावाड़ में जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत विकास परिषद की पहल पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम में महिलाओं को 3 महीने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जिले में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ है। 29 मई से शुरू हुआ यह अभियान 29 जून तक चलेगा। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। महिला

0: और बाल विकास विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। विटामिन ए की खुराक से रतौंधी और अंधता जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इससे दस्त और निमोनिया के घातक प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। CMHO डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि ये खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों पर उपलब्ध करवाई गई है। झालावाड़ पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ये गिरफ्तारी की गई। आरोपी साइबर अपराधों के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके बैंक खातों पर साइबर धोखाधड़ी की 36 शिकायतें दर्ज थी। जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले हार्डकोर और हिस्ट्री शीटर अपराधियों की संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर कार्रवाई की। इसी कड़ी में पुलिस और प्रशासन की ओर से नशा माफिया से जुड़े अपराधियों पर एक्शन लिया गया। उनके द्वारा बनाई गई दुकानों और मकानों तथा अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सु पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: प्रदर्शनी लगाई जावेली। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनायो जा रही है और दिन तंबाकू रे उपयोग ने समाप्त करने रे लखसु विश्व स्वास्थ्य संगठन का निशु शुरू करी जी महती वैश्विक पहल रो हिस्सो है। इन वर्ष रो विषय अपील का अनावरण निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना राख्यो गयो है। इन मौके माते प्रदेश भर माए भी न्यारा न्यारा जागरूकता कार्यक्रम राख्या गया। और अबे मौसम प्रदेश रा कई हिस्सा माए लाडला दो दिनासू बण्योड़ो आंधी बारिश रो दौर धीमो पड़ गयो। हालांकि कुछ एक जगह माथे आज भी धूल भरी आंधी रे साथ बिरखारी गतिविधियां दर्ज करी जी। मौसम महकमो पश्चिमी जिला माए तेज हवावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां चालने और न्यारी न्यारी जगावां माथे बरसात रे साथ ओला पड़ने री चेतावनी जारी करी है। महकमा बीकानेर फलोदी जोधपुर नागौर और डीडवाना कुचामन रे खातिर आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट वठिने जैसलमेर श्रीगंगानगर चूरू अजमेर और राजधानी जयपुर रे खातिर येलो अलर्ट बतायो है। मौसम केंद्र जयपुर पश्चिमी विक्षोभ रे असर सू आज बीकानेर जयपुर अजमेर भरतपुर कोटा जोधपुर और उदयपुर संभाग रा कुछ एक थोड़ा माए तेज बादल गरजने रे साथ धूल भरी आंधी चालने री आस जताई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट रा 19वां सीजन रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस रे बीच खेलो जावेला। अहमदाबाद रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम माथे सिंजा 7:30 बजे शुरू वेला। इन सीजन माए दोनों टीमा चौथी बार एक दूजे रे सामने वेला। पहले तीन मैचा माए आरसीबी 2 माए और गुजरात टाइटंस 1 माए जीत हासिल करी ही। दोनों ही टीमा लीग मुकाबले माए 9-9 जीत दर्ज करी ही और बरोबर अंक हासिल कर। ध्यान जोग है कि राजस्थान रॉयल्स सीजन माए चोखो प्रदर्शन करता हुआ प्ले ऑफ ताइरो सफर तय करो हो। इन खिताबी मुकाबले ने लेर क्रिकेट प्रेमिया माए रोमांच बण्योड़ो है। और आखिर माए खास खास खबर एक कर फेरू सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियां सू चोखे काम सू जुड़ने और कुछ नयो सीखने रो हेलो करियो। आकाशवाणी रे मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करिया। उर्वरका रे संतुलित उपयोग और मौसम संबंधी चुनौतियां माए काश्तकारा ने सलाह देवन खातिर काले सू देश भर माए खेत बचाओ अभियान री शुरुआत वेली। प्रदेश भर माए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे तहत कई गतिविधियां राखी जी। और आईपीएल क्रिकेट रो फाइनल मुकाबलो आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस रे बीच वेली खिताबी भिड़ंत। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पूरो व्यो मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान बहन भाई बहनों के लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल।

कार्यक्रम कृषक चौपाल सुन वाला सभी किसान बहन भाई ने आपका साथी अशोक कुमार शर्मा को गुणो गुणो राम राम। और किसान भाई, और देखो बार मौसम थोड़ो तावड़ो बहुत तेज पड़ रहे हो, तो बार जनी खेवा अपन रोवणी तपरी थी। 4-5 दिन तो बहुत तेज धूप थी, बहुत लू चाल रही थी, लेकिन देखो ये लू के साथ साथ ही 2-3 दिन से अपनो मौसम और खराब हो और पानी भी आ गयो, अंधड़ भी आई हो, और कई जगह पेड़ पौधा उखड़ गया, कई जगह तार गिर गया, खंबा गिर गया। तो किसान साथियों, जो बार जो मौसम चाल रही है यो बादला बीजला को, तो कहीं कहीं तो आंधी आई है, कहीं पानी पानी पानी आयो है, तो कहीं पानी के साथ ओला भी गिरा है। और देखो अपनी खेती बाड़ी को काम है यो तो चाल तो ही रहे है, और इन खेती का काम ने अपन मतलब है जो थोड़ो देख चौकिन करा, जैसा मौसम खराब हो रही हो तो अपन टेम छती अपना घर ने आ जावा, या फिर अगर अपन खेत माड़ में हुआ तो रूंगड़ा के नीचे नहीं खड़ा हुआ, कहीं बिजली का तार खंबा है तो वहाँ खड़ा नहीं हुआ, कोई थोड़ा मजबूत जगह

0: वो मजबूत छत हो, अच्छी झोंपड़ी हो या मजबूत छत की जगह हो, तो वहाँ जा रहा अपन सुरक्षित रह सका। और देखो किसान साथियों, खेत बाड़ी खेती बाड़ी ने तो अपना अपना साथ अपना पशु पशु पशुआर ने भी ले जावा, अपना टाबरा ने भी ले जावा, तो उन्हों को भी जरूर ध्यान रखना है कि भाई मौसम खराब होवे और बादलों बीजलो होवे तो वहाँ से तुरंत चालदरन हो, यानी अपना घर की ओर सुरक्षित जगह आनो ही अपना आनो ही आन आ जानो चाहे। और देखो किसान साथियों, खेती बाड़ी रो काम अपनों आबार जो चाल रही हो, लोग कोई खेत हंका रहा है, कोई जुता रहा है, कोई खाद डाल रहा है, ऐसा अपनों काम चाल रही हो। और अबार जो गर्मी को मौसम चाल रही हो, तो ये गर्मी का मौसम में अबार जो लू की शिकायत है वो भी ज़्यादा हुए है। तो किसान साथियों, अबार जो अपना घर में जो भी ठंडा पेय पदार्थ छाछ है, दही है, ऐसा पीना चाहे और इसे लू से बचना चाहे, जैसा सुबह सुबह की टाइम ने काम कर लियो, फिर धूप कम होगी तो शाम की टाइम ने काम कर लियो खेती बाड़ी को, तो ऐसा मौसम है देखिन काम करना चाहे। और जतरो अपनों घर से जो ठंडी चीज़ें हैं, जैसा नींबू की शिकंजी पी ली है, दही छाछ पी लियो है, ये ऐसा तरल पदार्थ ही अपना जो घर में मिल जाए उनको सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहे। और देखो खावा पीवा की बात से और खान पीन से, आज वहीं एक आपनों जो चर्चा को विषय वो याद आयो कि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। देखो किसान साथियों, आज की दौड़भाग की जिंदगी में जीवन में लोग बाग कहीं हैं कि अपना जीवन में जो भी थोड़ी बहुत भी निराशा, थोड़ी बहुत भी कमजोरी, कहीं भी बात आते ही नशा की लत की ओर बढ़ जावे है। तो किसान साथियों, अब यो नशो कहीं हुआ, देखो कुछ तो अशुद्ध नशो, जैसा कोई गुटखो खा रियो है, कोई जर्दो खा रियो है, कोई चलम पी रियो है, कोई गांजो पी रियो है, तो यो दो तरह को है, एक तो खावा से और पीवा से। कुछ लोग सूंघबा को भी नशो करे। तो किसान साथियों, आज जो यो दिवस है अपनों जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इन दिवस पर अपना ने एक शपथ लेनी है कि भाई तंबाकू से गंभीर बीमारियां होवे, जैसा जो मुंह से खावे वहाँ के मुंह में दांत दांत की प्रॉब्लम हो जावे, यानी जीवन के आसपास या मुंह में गाल में छाला हो जावे और धीरे धीरे ध्यान नहीं दे तो वी छाला कैंसर को रूप ले लेवे और धीरे धीरे धीरे धीरे आदमी गुट गुट के ख़त्म हो जावे। और देखो इनके साथ साथ ही कहीं परिवार इलाज भी करावे और इलाज में भी काफ़ी पीछा खर्च हो जावे। तो किसान साथियों, तंबाकू को सेवन जरूर अपना ने छोड़नो। दूसरा किसान, कुछ लोग बाग ऐसा है, किसान ही नहीं बहुत सा है आजकल की तो युवा पीढ़ी में भी खूब चाल रही हो यो, तो अपना ने जैसा अपना छोरा छोरी उनको भी ध्यान रखना है। छोटा छोरा छोरी कहीं करेगा, घर से निकल जावे और कहीं भी आस पड़ोस में विमल खावे तो उन्होंने भी रोकनो है। और दूसरा देखो, कुछ लोग भी कहीं है, कुछ लोग बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, तो उनसे भी अपना जो फेफड़ा है भी खराब होवे और धीरे धीरे धीरे आदमी मतलब है जो एक प्रकार से कमजोर हो तो गुट गुट के मरवा की स्थिति आ जावे और वो धीरे धीरे अपनी जो उम्र है, जो परमात्मा ने जो उन्हीं उम्र दी हुआ, जो जत्रो जीवन दियो वो जीवन बीच में ही समाप्त हो जावे। और देखो इन्हीं का चक्कर में कहीं परिवार को बहुत सारो पीछो भी खर्च हो जाओ, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अपना परिवार का सदस्य छोड़ वो नहीं चाहे, लेकिन अपन कोशिश करा और लोगों या जागरूक करा कि जो नशा की चीज़ें हैं, तंबाकू है और भी दूसरी नशा की चीज़ें हैं, या अपन इनको सेवन अपन नहीं करा और दूसरा ने भी नहीं कर पा दे। और देखो अपन बातचीत तो खेती बाड़ी की ओर करता रहेगा, लेकिन थोड़ा सो एक विराम लेवा।
1: और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जलवायु न्याय, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु संकट एक निष्पक्षता का भी मामला है। यह उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिन्होंने इसे पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया है, जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं, बुजुर्ग लोग और आने वाली पीढ़ियां। जलवायु

0: जलवायु परिवर्तन को मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में देखने का मतलब है कि सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यह उन लोगों को साक्षात बनाता है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। यह देशों और पीढ़ियों के बीच जिम्मेदारी को निष्पक्ष रूप से बांटता है। जलवायु न्याय का मतलब है सबके लिए समानता, शांति और सतत विकास। क्या आप जानते हैं, यदि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो अफ्रीका की आधी से ज्यादा आबादी कुपोषण के जोखिम में पड़ सकती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: किसान साथियों, अपन बात कर रहा था विश्व तंबाकू दिवस की, तो किसान साथियों देखो, तंबाकू जो भी है, तंबाकू जैसा चीज़ है, जैसा जो भी नशीली चीज़ है, तंबाकू है, सिगरेट है, खेणी है, गुटखा है, तो ये पे अपना अणा को सेवन अपना नहीं करना है। और देखो, आप सेवन करोगा और बीच में ही अगर जो बीमार हो गया और आप चला गया तो आपका परिवार का बच्चा बच्चियों को कहीं होगो, यो जरूर जैन करके ही आप ध्यान करो और ये नशा की लतें छोड़वा की कोशिश करो। और देखो किसान साथियों, अपन आगे आज अपन कृषक चौपाल में एक अच्छी जानकारी ले रहा है, अच्छी भेंट वार्ता, तो यह है मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु हरी खाद एक विकल्प, और यह जानकारी आप लोग सुनो।
2: आज हमारे साथ है पुष्पदयाल जी नागर, सहायक कृषि अधिकारी झालावाड़। कार्यक्रम कृषक चौपाल में आपको गुण गुण स्वागत। राम राम।
3: राम राम भाई, किसान भाइयों राम राम।
2: नागर साहब, आज को विषय आपनों मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु हरी खाद एक विकल्प। तो नागर साहब, आप ये बताओ कि हरी खाद होवे कहीं अपने?
3: हरी खाद वो होती है जिसमें फसल को फूल वाले अवस्था में खड़ी फसल को मिट्टी में प्लेवा करके अंदर दबा देते हैं, वो हरी खाद है।
2: तो जो हरी खाद है अपने लोग बाग बोता आ रहा, जैसा सन बोता आ रहा था, तो वही वी फसला हरी खाद है?
3: हाँ, वही फसलें हैं। उसके अलावा जो ढेचा है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, इन फसलों को भी हरी खाद के रूप में अपना प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि जैविक पदार्थ पत्तियां वगैरह ज्यादा हो वो काम आती है।
2: तो ऐसी कसी कसी फसला है जड़ा से अपन हरी खाद बना सका?
3: इसमें मुख्य रूप से सनई है, ढेचा है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है, ये फसलें हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कि ज्यादा पत्तियां होगी तो हरी खाद अच्छा होगा और ज्यादा मात्रा में जीवाश्म जमीन के अंदर रहेंगे।
2: तो नागर साहब, अभी बताओ कि जो हरी खाद की जो फसला है, अणा किसान कद बोवे?
3: हरी खाद मुख्य रूप से बरसात में ली जाती है, क्योंकि बरसात में इसलिए लेते हैं कि उसमें क्या है कि मिट्टी के अंदर उसको पलटी करते हैं तो वो सड़ जाती है, इसलिए इसका मुख्य टाइम है मानसून आते ही पहले मानसून में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी हरी खाद की बुआई करते हैं, जिससे कि वो बरसात के टाइम जमीन में पलटी करने से वो अच्छी तरह सड़ गल जाती।
2: तो नागर साहब, ये बताओ कि जो हरी खाद की जो फसला है, अणा की विशेषता कहीं होनी चाहिए?
3: हरी खाद वाली फसलों में जो तने हैं, पत्तियां हैं, वो ज्यादा हो, जिससे कि ज्यादा मात्रा में जैविक कार्बन अपनी भूमि को मिलेगा और जैविक पदार्थ जितने ज्यादा होंगे उसमें पोषक तत्व की मात्रा भी ज्यादा होगी और भूमि की दशा भी सुधारेंगी।
2: तो किसान भाई हरी खाद बोया के कतरा दिन बाद अपना खेत में मिला सके?
3: किसान भाइयों, वैसे तो सनई ढेचा की 45 दिन बाद जब वो फूल वाली अवस्था होती है उस टाइम सबसे उचित समय होता है, फसल भी नाजुक होती है जिससे कि वो जमीन में अच्छी तरह सड़ गल जाती है, इसलिए वो नाजुक अवस्था में फूल जब आते हैं उस टाइम मिट्टी में इसको मिला देते हैं।
2: तो नागर साहब, जैसा अपन जो ढेंचा की फसल है या सनाई की फसल है, ये खेत में मलावा अपन तोड़ के डाला तो कहीं उन टाइम पे खेत में नमी भी होनी चाहिए?
3: हाँ, उस समय नमी होना चाहिए ताकि वो अपन जब उसमें चलाएंगे मिट्टी पलटने वाला हल या उसको करेंगे उस टाइम नमी होना जरूरी है, ताकि नमी रहेगी तो उससे वो ज्यादा डिकम्पोज होगा, सड़न होगी उसकी।
2: तो नागर साहब, आज का टाइम में जो अपन देख रहे हैं कि मवेशी की संख्या भी कम होती जा रही है और रासायनिक खाद को भी बारी प्रयोग हो रही हो, तो यह बताओ कि जो यह हरी खाद है यह अपना खेता में कहीं कहीं की पूर्ति कर सके? मतलब
3: हरी खाद में जो पौधे को जो आवश्यक तत्व है वो सभी मौजूद रहते हैं, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधे के लिए अति आवश्यक है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो मुख्य पोषक तत्व वो भी उसमें पाए जाते हैं, और इसके साथ

0: साथ उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मिलते हैं और मिट्टी की जो मुख्य रूप से भौतिक दशा का भी सुधार करते हैं। मृदा संरचना जो बहुत जरूरी है, जिसमें पानी की सोखने की क्षमता, मृदा के पानी सोखने की क्षमता, हवा की एरेशन क्षमता, वो उसका भी विकास होता है।
1: अच्छा, यानी कि हरी खाद मृदा बहुत बहुत उपजाऊ बना देवे। अच्छा, एक और बात मुझे पूछबो चाहूँ कि जैसा अपना जो किसान भाई है, तो हरी खाद अगर बोबो चावे खेत में या हरी खाद की जो फसल लगाबो चावे, तो इनकी बीज दर कहीं हो?
0: इसकी बीज दर फसलों के हिसाब से 20 किलो पर हेक्टर भी होती है।
1: तो ये जो फसल है अपन जो खाद का प्रयोग में काम में लेवा, तो ये फसल है अपन मतलब जो सांगनी बोवा या थोड़ी छिदी बोवा, कैसा बोवे?
0: इसको सांगनी बोएंगे, क्योंकि जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी हरी खाद अपनी फसल को मिलेगी। तो ये सांगनी फसल है, ज्यादा बीज डालोगे तो अच्छा फायदा होगा, ज्यादा पौधे होंगे, जैविक कार्बन ज्यादा होगा जमीन के अंदर।
1: अबार जो अपना किसान भाई है, जैसा अबार बहुत सारा रासायनिक खादों को प्रयोग कर रहा है, बहुत सारी दवाइयों को प्रयोग कर रहा है, जैसा कीट रोकबा के लिए और उपजाऊ बढ़ावा के लिए, तो यो जो हरी खाद है या कसा कसा फायदा बंद हो सके?
0: हरी खाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएगी, मिट्टी लंबे समय तक चलेगी, और जो रासायनिक उर्वरक ये डाल रहे हैं इससे क्या है, जमीन धीरे धीरे खराब हो रही, और जो मृदा पार्टिकल है मृदा वो बिल्कुल खराब हो रहे, जिससे कि भूमि धीरे धीरे पैदा होना और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जमीन के अंदर वो नष्ट हो रहे, जिससे कि पौधे को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। इसलिए रासायनिक खाद धीरे धीरे अपनी मिट्टी को मृदा को उर्वरा शक्ति उसके जो ताकत है फसल पैदा करने की धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए हरी खाद ये जैविक विकल्प है, जिससे कि अपनी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसलिए हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए।
1: तो जैसा अपन बात करना नागर साहब की जो हरी खाद है, तो अनि हरी खाद है मतलब है जो किसान कसा एक जगह बो सके, मतलब कसी कसी विधियां से इनको प्रयोग कर सके बुआई?
0: भाई मुख्य विधि तो वही है, जिस खेत में हरी खाद लेना है उसमें बुआई करे। इसके अलावा यदि कहीं उस खाद पौधे को फसल को यहाँ उगा कर दूसरे खेत में भी ले जाकर वहाँ भी पलेवा करके उसको दबा सकते हैं, ये दूसरी विधि ये भी है।
1: तो इनमें सर्वश्रेष्ठ विधि तो जी खेत में है उमे ही लगानी चाहिए?
0: हाँ, मुख्य वही है, जहाँ आपको हरी खाद लेना है उसी खेत में उसकी बुआई करें और उसके अंदर ही उसको पलेवा करके जमीन में के अंदर दबा देवे।
1: तो अबार जो अपना किसान भाई है वो कद ही फसल है बोधे, मतलब हरी खाद बोधे और कतरा समय बाद उन्हीं खेत में मिला दे?
0: अभी जो मानसून जो पहली बारिश होगी, मानसून जैसे खरीफ वाली फसलों की बुआई करेंगे उसी टाइम इसकी बुआई कर दे, और जब फूल वाली अवस्था आती है फसल की उस समय इसको मिट्टी में पलेवा करके दबा देवे।
1: यदि मान लो अपन ने हरी खाद की जो फसल है वह लगाई, उनके बाद अपन ने उन खेत में मिला दी, तो उनके बाद वापस अपन खेती अगली वाली फसल कर सका नहीं?
0: हाँ, उसके बाद ये केवल खरीफ की में ही पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद आप रबी की जो बुआई करें वो आराम से समय पर रबी की बुआई कर सकते हैं।
1: तो नागर साहब, आप किसान भाइयों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बनाए रखने में जो हरी खाद है कतरी महत्वपूर्ण है, इसका बारे में आप कई सलाह देबो चाहो
0: किसान भाइयों? मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अपन जो रासायनिक उर्वरक कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं उसे धीरे धीरे मिट्टी की भौतिक दशा खराब हो रही है, और उसमें इसलिए आप जैविक जो हरी खाद है इसका प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की जो भौतिक और रासायनिक दशा में परिवर्तन होगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहेगी। उसमें जो सूक्ष्म जीव है, कार्बन का रेशियो है, उन जीवों की मात्रा बढ़ी रहेगी, तो अपनी मिट्टी लंबे समय तक उर्वरक रहेगी।
1: अंतिम ये पूछबो चाहूँ कि भाई जैसा कोई किसान हरी खाद को प्रयोग करबो चाह, तो जमीन में मतलब जैसा मान लो कोई पास 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा है, तो कसा करे वो?
0: वो किसान भाई ये भी कर सकता है, इस साल 2 बीघे में इसमें उसने हरी खाद ले ली, फिर अगले साल उसमें कर ले, दूसरे 2 बीघे में कर ले, और फसल भी वो करता रहे, ताकि 2-2 बीघे से करके वो पूरी जमीन में धीरे धीरे हरी खाद हो जाएगी। एक हरी खाद एक साल लेने के बाद 4-5 साल तक उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहेगी।
1: तो नागर साहब, आपने अतरी अच्छी जानकारी हरी खाद का बारे में दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब। राम राम।
2: किसान साथियों, आपने हरी खाद का बारे में सुनियो, और देखो हरी खाद है तो हरी खाद एक यूं देखबा में आवे तो सस्ती खाद, पर अपना किसान भाई कहीं जो पुराना समय में तो असुई करता था कि भाई जो अडाण का खेत जना बोल लेता जी, मैं अच्छी फसलां लेबो चाहता था, गेहूं वहूँ असा की ज़्यादा पैदा लेबो

चाहता था, ऊ में कहीं करता था, ऊ में सण बो देता था, और बरसात में उन्हीं जमीन जैसे ही फूल आया तो बरसात की टाइम में उन सण बीजा उपाड़ उपाड़ के तोड़ तोड़ के खेत में ही पटक देता था, तो ऊ में ही सड़ जाते तो, और दूसरी फसल अपनी सर्दी की फसल बो लेता था जो गांधी। तो आभार जैसा अपना किसान है, बहुत सारा किसान का ही करे कि बहुत सारा किसान एक ही फसल ले, जैसा जहाँ पानी नहीं है तो सोए सरसों की फसल ले हुए सर्दी में, तो उना किसान बयान के लिए यो बहुत अच्छो कारगर खाद को एक अच्छो खाद है। वी वसा भी उन्हें उंदाड़ू छोड़े तो क्यों नहीं उमें असी हरी खाद की फसलें लगा और उन्हें बरसात का टाइम में उमें ही दबा दे, तो उन्हें की पैदावार और बढ़ जाएगी और आपकी जो खेती की जो लागत है वह भी कम हो जाएगी। तो किसान साथी ही मिट्टी की उपजाऊ बनाबा की प्रक्रिया हरी खाद के बारे में विचार करेगा। और देखो किसान साथी हैं, अपन बात तो बातें तो करता ही रहूँगा, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ो मनोरंजन भी होना चाहे। तो अबार जो मौसम चाल रही हो, अबार जो महीनों चाल रही हो ज्येष्ठ मास को, तो यो थोड़ो धर्म कर्म को मास भी है, तो क्यों नहीं एक अच्छो सो भजन सुनना। तो आओ सुना महाराज राम रघुनाथ और योग आर्या है देवीलाल धाकड़ और साथी।

किसान साथियों, आपने जो एक लोक भजन भी सुनियो और देखो आपने भी आनंद आयो होगा, और देखो इनके साथ साथ ही अपन और भी बातें चीतें ले रहा हाँ। तो आज अपन एक जानकारी की जो बात ले रहा हाँ उनमें है ई श्रम कार्ड योजना या श्रमिक कार्ड, प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना। देखो किसान साथियों, ई श्रमिक कार्ड जो है यो असंगठित जो क्षेत्र का जो है, क्षेत्र के जो श्रमिक है उनके लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्ड है। यानी खेपा को मतलब यो है कि यो एक ऐसा कार्ड है कि जिसे जो भी श्रमिक है जो असंगठित क्षेत्र से काम कर रियो है उनके लिए कहीं उनको एक पोर्टल पर उनकी एक जानकारी एकत्रित करे सरकार, और वो व्यक्ति जो सरकार के द्वारा जो वित्तीय योजनाएं हैं, सहायता है, बीमा है, पेंशन है, ये ऐसा कि उन्हें मिले। और देखो इनको मेन उद्देश्य कहीं है जो असंगठित क्षेत्र है, जैसा ठेला लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रही हो है, कोई नरेगा में काम कर रही हो, तो ये ऐसा का जो छोटा छोटा जो भी श्रमिक है उन श्रमिक कारण असंगठित क्षेत्र का माना जाएगा, और वहाँ के लिए यो एक डाटाबेस तैयार करो जावे, उन्हों के लिए यो एक कार्ड बनाया जा रही है। और ई में कहीं है कि ई श्रमिक कार्ड का माध्यम से आप 18 साल से लेकर 59 साल की उम्र तक का ई कार्ड से जुड़ सको, और यो कार्ड आपका जो नज़दीकी ई मित्र केंद्र है वहाँ जाके आपका फोटो वगैरह री ले जाकर आप इनको इनसे जुड़ सको। और इनसे जुड़िया के बाद आपने देखो इनसे जुड़िया के बाद आपने जो है एक तो पेंशन की स्कीम जो भारत सरकार जो भी पेंशन स्कीम चला उनको फायदा मिले, दूसरों अगर दुर्घटना हो जावे तो उनके लिए बीमो भी मिले। अबार 2 लाख तक को बीमो मिल रही है लोगों, तो वो दुर्घटना बीमो या मृत्यु हो जावे पर बीमा की राशि भी मिले। तो जो श्रमिक अबार जो 18 से 59 साल के बीच का है वो सब ई श्रमिक कार्ड से जुड़ जावे और जुड़ के और जो सरकार की योजना है उनको लाभ ले सके। तो किसान साथियों, प्रधानमंत्री जो श्रमिक कार्ड योजना है ये एक अच्छी योजना है और इनसे आप जुड़ सको। और देखो किसान साथियों, मन कर रही हो कि क्यों नहीं एक और भजन सुन लियो जावे, तो आओ सुना यो भजन गणपति वंदना पूनम चंद प्रेमी के साथ।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साज और आवाज़।

आइए सुनते हैं अब इस गीत को, फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से, आवाज़ मुकेश की, गीत के बोल शमीम जयपुरी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए सुनते हैं अब इस गीत की धुन। वायलिन पर हैं अनिल मोहिले,

0: हवा महल में आइए आज सुनते हैं गंगा प्रसाद माथुर की लिखी और निर्देशित नाटिका मूड।
1: हाय हाय तो डाल, अरे तेरा सत्यानाश है, सारा दूध बह गया। हट हट हट।
2: ओ हो हो, क्या शोर मचा रखा है। अरे भाई शन्नो, ए शन्नो, हद हो गई। एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ मगर चार लाइन नहीं लिख सका। मचाल है कि कोई काम इत्मीनान से करने दिया जाए। दो घड़ी की शांति मयस्सर नहीं है इस घर में।
1: शांति शांति शांति, ये भी कोई घर है जहाँ हरदम मरगट का सा सन्नाटा छाया रहता है? जरा कहीं खटका हुआ कि परले है?
2: शन्नो
1: शन्नो नहीं, शांति शांति है मेरा नाम, समझे?
2: अरे समझ गया।
1: क्या समझ गया?
2: अरे यही कि तुम्हारा नाम शन्नो नहीं शांति है। और ये
1: क्या? अरे कहते कहते रुक क्यों गए? और क्या?
2: कुछ नहीं, बस यही कि हमारे घर वाले भी कैसे कैसे नाम रखते हैं, सुनते ही हंसी आती है।
1: क्या मतलब?
2: अरे मतलब यही कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता उसका नाम रखा जाता है नैन सुखलाल, और जो सारी जिंदगी एड़ियां घिस घिस कर मरता है उसका नाम होता है चैन सुखदास। कुछ समझी?
1: मैं कुछ नहीं समझी।
2: अब देखो ना, मेरा नाम है अमीर चंद, है ना?
1: हाँ हाँ है।
2: और तुम्हारा?
1: शांति
2: शांति शांति और अमीर चंद।
1: इसमें हंसने की क्या बात है जी?
2: अरे हंसने की बात नहीं है तो और क्या है। अब देखो ना, ना तुम मैं अमीर हूँ और ना तुम। खैर छोड़ो, मेरा नाम अमीर चंद है ना, मगर जी

0: मैं भुनी भांग भी नहीं, मेरा नाम होना चाहिए था फकीर चंद या गरीब चंद, और तुम्हारा
1: मेरा
0: तुम्हारा नाम अगर शांति देवी की जगह क्रांति देवी होता तो कितना जस्ता।
1: हाँ हाँ ठीक है, ना जाने तुम कवियों को क्या बैर होवे है अपने घर वालों से, कितना ही अच्छा नाम रखे माँ बाप मगर ये उसे बदल कर ही छोड़ेंगे। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे क्या ये बताओ कि चीख चीख कर आसमान को क्यों सर पर उठा रहे थे?
0: मैं चीख रहा था भाई? वाह ये भी खूब रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांट।
1: आए लो सुना इनकी बातें, अब मैं चोर भी हो गई और आपको देखो बड़े आए हैं कोतवाल बनकर, सुबह से शाम तक दफ्तर में लोहा कूटते हैं और समझते हैं अपने आप को कोतवाल।
0: शन्नो शन्नो मेरा मतलब है शांति जी, लगी फिर तुम वही उल्टी सीधी बातें करने।
1: उल्टी सीधी की क्या बात है, नहीं पीटते रहते तुम दिन भर दफ्तर में लोहे से लोहा?
0: अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक टाइपिस्ट को लोहा कूटने वाला कहकर मुझे चिढ़ा सकती हो, मगर देख लेना देख लेना एक दिन इसी टाइपिस्ट के नाम का साहित्य की दुनिया में तहलका मचा होगा। आज के इस लोहा कूटने वाले का लोहा सारे संसार को मानना पड़ेगा, समझी? मगर छोड़ो तुम क्या समझोगी, भैंस के आगे भी बजाने से भी क्या फायदा है, अब तो तुम भगवान के लिए यहाँ से जाओ और मुझे कुछ लिखने पढ़ने दो।
1: अजी लिखो खूब काले करते रहो कागज, मैंने कौन सी तुम्हारी कलम पकड़ रखी है? हाँ नहीं तो एक तो खुदा वास दी, उस पर कभी मुझे चोर बना रहे हैं तो कभी मुझे भैंस।
0: ओहो बड़ी गलती हो गई शांति देवी जी, जो मैंने तुम्हें आवाज दी अब मुझे उसके लिए माफी दे दो, मेरा मूड खराब मत करो।
1: हाँ हाँ मैं तो जानू हूँ मुझसे बात करने में तुम्हारा मूड खराब ही होता है, पर कान खोल कर सुन लो, मेरे भी काले कुत्ते ने नहीं काटा कि बेकार में तुमसे अपने भेजे के ठीकरे करूंगी। मैं जा रही हूँ पड़ोस में धनों की माँ के पास, तुम बैठे रहो इन कागजों में सर दिए।
0: हाँ, हाँ बाबा जाओ जरूर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुनो
1: कहो क्या है, अब क्या बात है?
0: अरे मेरी कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं आई?
1: नहीं। अरे हाँ याद आया, मेरे पिताजी के पास से एक आदमी आया था।
0: तुम्हारे पिताजी के पास से?
1: जी हाँ हमारे गांव से।
0: अरे आया होगा, मुझे इससे क्या मतलब है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। तुम भी अजीब हो, कहो खेत की तो सुने खलियान की।
1: खलियान का क्या जिक्र है जी, मैं भी तो खेती की बात कर रही हूँ।
0: खेत की बात क्या मतलब?
1: पिताजी ने कहला भेजा है कि आजकल चने की फसल है, खेती लहला रही है, दो चार रोज के लिए गांव आ जाओ और खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ।
0: खेतों से ताजे ताजे चने तोड़कर खाओ, वाह वाह वाह क्या कहने, बहुत खूब। अरे तुम्हारे पिताजी ने क्या मुझे बैल भैंस बकरा ऊंट समझ रखा है कि खेत खेत चने चरता फिरूं मैं?
1: अरे मैं कहती हूँ आपको खेतों में चने तोड़कर खाना अच्छा नहीं लगता?
0: बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे खेतों और चनों से कोई दिलचस्पी नहीं है, बख्शो मुझे, मुझे लोहे के चने ही चबाने दो। अरे मेरी किस्मत में तो यही लिखे हैं।
1: आपको तो हर वक्त अपनी किस्मत का ही रोना रहता है, खैर आप जाए या ना जाए मैं तो जरूर जाऊंगी वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे।
0: शौक से तुम जरूर जा सकती हो।
1: और हाँ मुझे याद आया, पिताजी ने उस आदमी के हाथ असली घी की एक हांडी और ताजे गुड़ की दो भेलियां भी भेजी हैं।
0: ओहो मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी का इरादा क्या है, आखिर चाहते क्या है वो? मुझे बनिए की दुकान खुलवानी है जो रोज रोज ही असली घी और गुड़ भेजते रहते हैं।
1: इसमें क्या बुरी बात है?
0: बात बुरी हो या भली हो इससे बहस नहीं है, पर उन्हें लिख दो कि मैं असली घी खाने का आदी नहीं हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ वनस्पति घी खाया है और मरते दम तक यही खाता जाऊंगा, असली घी भेज भेज कर मेरी आदत खराब न की जाए, असली घी खाने से मेरा तो गला खराब हो जाता है। ये गुड़ की भेलियां, अरे तौबा तौबा उनकी तरफ देखने से तो मुझे मतली आने लगती।
1: हाय हाय इतना अच्छा गुड़ तुम्हें कभी नसीब भी हुआ है? जरा चलकर तो देखो जी, तुम्हारे शहर में तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा गुड़।
0: अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है श्रीमती जी के शहर में मैं जाकर गुड़ ढूंढता फिरूं।
1: ओहो तुम तो चौमुखे चले हो जी, मैंने कब कहा कि बाजार में जाकर गुड़ ढूंढो, मैंने तो एक बात कही थी, पर तुम तो लगे है लड़ने को ही बैठे हो, ना जाने पिताजी की भी क्या ममता की रग फड़के हैं जो तुम जैसे नाशुक्रों के लिए इतनी अच्छी चीजें भेजते हैं।
0: हे भगवान
1: अब उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनकी मोहब्बत की यहाँ पर ये कदर होती है।
0: हो हो हो अब ये शुरू हो गए ना तस्वे बहने, अरे उनकी मोहब्बत से कौन कमबख्त इनकार कर रहा है, लेकिन मोहब्बत जाहिर करने के लिए ये असली घी, ये ताजा गुड़, ये तिल के लड्डू, गन्ने के रस की खीर, मैं कहता हूँ इन सब चीजों की क्या जरूरत है। अरे सच कहता हूँ शन्नो रानी, तुम्हारे पिताजी के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है जो एहतराम है।
1: बस बस मैं सब जानती हूँ, बंद कीजिए ये किस्सा नहीं तो।
0: हाँ, मेरा भी यही ख्याल है श्रीमती जी, कि इस गुस्से को यहीं खत्म कर दिया जाए।

0: क्यों खामखा मेरा भी मूड खराब हो और तुम्हारा भी।
1: देखो जी, एक बात आज तुमसे मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये तुम अपना मूड चाहे खराब करो चाहे अच्छा, पर मेरे मूड के खराब होने की बात मत किया करो।
0: मूड?
1: भगवान ना करे कि मेरा मूड खराब हो।
0: मूड? अरे मूड नहीं शन्नो रानी, मैं मूड की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम मूड को क्या समझो? अरे अगर ये समझ लेती कि मूड क्या चीज है तो अच्छे ही दिन ना होते।
1: अजी नहीं समझती हूँ तो समझा दो ना, अगर पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, इतनी कम अकल तो नहीं हूँ कि कोई चीज समझाई जाए और मैं समझ भी ना पाऊँ।
0: अच्छा अच्छी बात है, तो बैठो आज तुम्हें समझा ही दूं कि मूड क्या होता है।
1: हाँ हाँ समझाओ कि मूड क्या होता है।
0: मूड मेरा मतलब है मूड, मूड दिमाग की वो स्थिति होती है कि अगर वो बिगड़ जाए तो।
1: अजी यही तो मैं कह रही थी, मूड दिमाग के बिगड़ने का अंग्रेजी नाम है।
0: ओ, ओ।
1: तुम जिसे अंग्रेजी में मूड खराब होना कहो, हम उसे अपनी भाषा में मूड बिगड़ना कहे।
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मूड को अगर आसान और सरल शब्दों में तबीयत का रुझान या मन की वो स्थिति कह सकते हैं कि जब हम एकाग्रचित होकर अपने मन को बड़ी लगन और शौक के साथ किसी एक कार्य विशेष की ओर केंद्रित कर लें।
1: ओहो।
0: अब जैसे फर्ज करो, तपती दोपहरी में हम तुम ऊपर बरसाती में बैठे हो, मैं तुम्हें एक टक निहार रहा हूं और तुम पसीनों में तर बतर बैठी अपनी धोती के पल्ले से हल्के हल्के अपने को हवा कर रही हो, तभी मैं कहूं शन्नो जी तुम इस वक्त मुझे बड़ी लुभावनी लग रही हो, जी चाहता है तुम्हारी पेशानी पर चमकने वाले पसीने के इन बिल्लौरी मोतियों की माला गूंथ कर तुम्हें पहना दूं। तुम्हारे पल्लू के हिलाने से जो भीनी भीनी हवा निकल रही है, इसमें आओ हम तुम मुड़कर आसमानों को छू जाएं, तो जानती हो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि मैं इस वक्त मूड में हूं, रोमांटिक मूड।
1: कौन समझदार आदमी तुम्हारी बातें सुनकर नहीं कह देगा कि इनका मूड फिर गया है।
0: ओ, अभी तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा साथ रहा तो जरूर एक दिन ये मूड फिर जाएगा। जाओ बाबा जाओ, तुम नहीं समझ सकोगी कि मूड क्या होता है। मैं हारा तुम जीती महारानी।
1: मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम कुछ समझा ही नहीं सकते हो। रही बात मूड फिरने की, वो तो भगवान ही जाने है कि किसका मूड फिरेगा, तुम्हारा या मेरा। पर तुम अपना मूड अच्छा करते रहो, मैं तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास गांव जाके रहूंगी।
0: हाँ हाँ जरूर जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है श्रीमती जी।
1: पर खाली हाथ थोड़े ही जा सकूं हूँ, कुछ रुपए पैसे का भी तो बंदोबस्त होना चाहिए। लाओ निकालो रुपए, मैं आज ही चली जाऊंगी।
0: लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है श्रीमती, यही कोई बस 5-7 रुपए पड़े होंगे, इसमें पूरा महीना निकालना है।
1: ये तो मैं जानती हूँ, मेरे नाम के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, पर अगर मुझे भेजना है तो रुपयों का इंतजाम करना ही होगा।
0: अरे इंतजाम तो मैं सब कर दूं, लेकिन तुम करने दो तब ना। अब सुबह से बैठा हूं, एक लाइन नहीं लिख सका। अरे अगर तुम मुझ पर कृपा करो भवानी, तो रुपयों के ढेर लगा दूं।
1: अच्छा तो क्या जो तुम लिखने जा रहे हो उसके रुपए मिलेंगे?
0: जी हाँ, वरना मेरा क्या दिमाग खराब हुआ है जो कागज काले कर रहा हूँ।
1: अच्छा तो लो मैं जाती हूँ, तुम लिखो, पर जब रुपए मिले तो मुझे गांव जरूर भेज।
0: अरे जरूर भेज दूंगा, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस वक्त तो जाओ यहाँ से।
1: जाती हूँ जाती हूँ, पर हाँ कब तक आएंगे रुपए, कब तक भेजोगे मुझे गांव?
0: अरे बस जरा एक पब्लिशर फंस जाए।
1: ये कब तक फंसेगा तुम्हारा पब्लिशर?
0: पब्लिशर बस ये उपन्यास पूरा हो जाए, समझ लो पब्लिशर फंस गया।
1: कब तक पूरा होगा ये उपन्यास?
0: बस बस बस शुरू होने की देर है, पूरा हुआ समझो।
1: पर कब शुरू करोगे?
0: अरे कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो शुरू कर दूंगा।
1: पर ये अच्छा सा थीम कब तक मिलने की उम्मीद है तुम्हें?
0: थीम की बात तो बस वही मूड पर है शन्नो रानी, जब जरा मूड आया के थीम सूझा
1: मूड, फिर वही कमबख्त मूड।
0: अरे मूड नहीं शन्नो जी, मूड मूड।
1: मैं सब जानती हूँ, जिसे तुम अंग्रेजी में मूड कहो हो उसे हम अपनी भाषा में मूड मूड कहते हैं।
0: ओहो, अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं?
1: अजी बस समझा लिया, जो बात तुम खुद नहीं समझते हो मुझे क्या समझाओगे। अच्छा मैं चली रसोई में, वरना कहोगे मूड खराब।
0: अरे हाँ जाओ, वरना सचमुच मेरा मूड खराब हो जाएगा।
1: मूड नहीं मूड।
0: अरे हाँ बाबा मूड मूड मूड, तुम जीती मैं हारा, मूड नहीं।

FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी झालावाड़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म थी अनोखी अदा, और उसके बाद आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म अनपढ़ में। कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में फिल्म अनोखी रात से हमने लिया है। आइए इस गीत को सुनते हैं, जिसको कि संगीतबद्ध किया है रोशन ने, आवाज़ मुकेश की।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो कूल।

0: और गर्म हवा के झोंके।
1: ऐसे में बच्चों को बाहर जाने से कोई कहाँ तक रोके।
0: मम्मा सर दर्द।
2: अगर बाहर से आने पर बच्चों में तेज सर दर्द, बेहोशी, अधिक पसीना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सांस या धड़कन तेज होना, उल्टी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो
3: ये आकाशवाणी झालावाड़ है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के

0: पिकासो का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन

मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास

0: पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी झालावाड़ है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में एक भक्ति रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी झालावाड़ है। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा संपन्न होती है। FM 103.2 MHz पर कल प्रातः 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।